मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026। सुबह के 5:56:40 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा। श्रोताओं, मैं हूं इस सभा में आपके साथ आपका रेडियो मित्र जितेंद्र कुमार। सभी श्रोताओं को नमस्कार, शुभ प्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं

0: में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
2: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में ये देश गाना।

श्रोताओं, अभी आपने सुना समूह स्वर में ये देशगान। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण और साथियों के स्वर में ये गणपति स्तुति।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना इस भजन में। आइए अब आपको सुनवाते हैं पंडित डी वी पलुस्वर के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केसी डे का गाया ये भजन। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति श्रुति साडोलीकर को सुनिए इस भजन में।

0: श्रोताओं, इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन कर्म विषय पर। आज चिंतक हैं स्वामी आत्मानंद।
1: प्रायः सभी धर्म और दर्शन पाप और पुण्य की विवेचना करते हैं, पर यह विवेचन प्रायः इतना जटिल होता है कि इनसे पाप और पुण्य का स्वरूप स्पष्ट होने के स्थान पर और उलझ जाया करता है। एक ग्रंथ में पाप और पुण्य की बड़ी सरल परिभाषा दी गई है। वहाँ कहा गया है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात परोपकार पुण्य है तथा परपीड़न पाप। कुछ अतिवादी लोग परपीड़न का ऐसा मतलब लगाते हैं कि कभी किसी को दुखी नहीं देना। इससे कई लोग शंका करते हैं कि चोर, डाकू, हत्यारा, लंपट, व्यभिचारी आदि दुराचारी व्यक्तियों से फिर किस प्रकार व्यवहार किया जाए, उनको दंड देना क्या परपीड़न नहीं है। इसका उत्तर यह है कि अन्याय का प्रतिकार और अन्यायी का दमन होना ही चाहिए, और यह परपीड़न में न आकर परोपकार में आता है। कर्मों के तीन प्रकार माने जाते हैं, पहला सामान्य कर्तव्य कर्म, दूसरा पुण्य कर्म और तीसरा पाप कर्म। व्यक्ति सर्वदा समाज से संबंधित होता है, उसके विचारों और कर्मों का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। जब वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों के निर्वाह के लिए उचित तरीकों का सहारा लेते हुए अपनी जीवन यात्रा तय करता है, तो उसके ये कर्म सामान्य कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। यदि वह अनुचित तरीकों का सहारा लेता है तो वह पाप कर्म करता है और समाज को भी अधोगति की ओर ले जाता है। जो कर्म व्यक्ति और समाज की अवनति करते हैं वे पाप कर्म की कोटि में आते हैं। दूसरी ओर जिन कर्मों से व्यक्ति और समाज की उन्नति होती है उन्हें पुण्य कर्म कहते हैं। भर्तृहरि ने इन तीन प्रकार के व्यक्तियों का चित्रण अति सुंदर रूप से किया है। वे नीति शतक में कहते हैं, एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्ये सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम भृताः स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानव राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे। भर्तृहरि पुण्य कर्मी को सत्पुरुष कहते हैं, सामान्य कर्मी को सामान्य और पाप कर्मी को मानव राक्षस। पाप कर्मी की वे एक और कोटि भी बताते हैं जो मानव राक्षस से भी गई बीती है। उसका नामकरण वे नहीं कर पाते। वे कहते हैं, एक तो सत्पुरुष होते हैं जो अपना स्वार्थ तजकर दूसरों के हित साधन में लगे रहते हैं। दूसरी कोटि सामान्य पुरुषों की है जो वहीं तक दूसरों की भलाई करते हैं जब तक उनके अपने स्वार्थ में धक्का नहीं लगता। तीसरी कोटि में मानव राक्षस आते हैं जो अपना मतलब साधने के लिए दूसरों का गला घोंटने में भी नहीं हिचकते, पर वे लोग जो अकारण ही दूसरों के हित पर कुठाराघात किया करते हैं किस कोटि में रखे जाएं मैं नहीं जानता। वस्तुतः दूसरों का कल्याण करना ही सर्वोच्च पुण्य है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो परोपकार को सबसे बड़े धर्म के रूप में माना है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मानस में वे कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार के समान महान धर्म अन्य कोई नहीं है। इसी प्रकार गोस्वामी जी पर पीड़न से अधिक जघन्य पाप भी दूसरा नहीं देखते। वे कहते हैं, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। वस्तुतः पुण्य जहां समाज को संगठित और विकसित करता है वहां पाप समाज में विघटन और विश्रृंखलता की सृष्टि करता है। हमारे जो आधार एवं कार्य सामाजिक जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं तथा विकसित करते हैं, जो शास्त्रानुकूल और मर्यादित हैं, वे ही पुण्य हैं तथा हमारे जिन कर्मों से समाज विघटित होता है वे ही पाप कहे जाते हैं।
0: कर्म विषय पर अभी आपने सुना आज का चिंतन। चिंतक थे स्वामी आत्मानंद। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है मानस कांड।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं। धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले, ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

0: श्रोताओं, ये थे आज के श्री रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। जानकारी का विषय है भिंडी की फसल को बीमारियों से कैसे बचाएं। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, सब्जियों में भिंडी एक प्रमुख फसल है। भिंडी की फसल में अनेक बीमारियों का प्रकोप होता है, लेकिन सभी बीमारियों में पीत सिरा और खर्रा रोग बहुत ही अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। यदि फसल पर पीत सिरा मोजक वायरस का आक्रमण फसल बुवाई के 35 से 40 दिन के अंदर हो जाता है तो फसल की पैदावार बहुत कम हो जाती है। पीत सिरा मोजक एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों की सिराएं कुछ मोटी, पीली और चमकीली हो जाती हैं और धीरे धीरे ये पत्तियां पीली और छोटी हो जाती हैं, बाद में सिकुड़कर मुड़ने लगती हैं। पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और भिंडी विकृत होकर कड़ी, छोटी और हल्के पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है, जिससे खाने योग्य नहीं रहती है और बाजार में बेचने पर कीमत नहीं के बराबर मिलती है। भिंडी की फसल में पीत सिरा मोजक रोग का संचरण बेमेसिया टेवेकाई नामक तंबाकू की सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। ये मक्खियां भिंडी के पौधों पर से ही अपना पोषण प्राप्त करती रहती हैं और प्रजनन वहीं पर बढ़वार होती रहती है। इस प्रकार रोगी पौधों से रोग के विषाणुओं को स्वस्थ पौधों तक पहुंचाती हैं। जब ये फसलें खेत में नहीं रहती हैं, जब ये मक्खियां कुछ जंगली किस्म के पौधों पर निष्क्रिय रूप में रहकर अपना जीवन निर्वाह करती रहती हैं, फसल में जिन पौधों पर पीत सिरा मोजक रोग के लक्षण दिखाई दें, उन्हें तत्काल उखाड़कर जलाकर नष्ट कर दें। फसल बुवाई के 35 दिनों तक पीत सिरा मोजक रोग के प्रति अधिक सजग रहें। खेत के आसपास उगे सभी खरपतवारों को समय समय पर नष्ट करते रहें और रोग रोधी किस्में उगाएं, जैसे पंजाब सात, परवड़ी, दीप मालका, क्रांति जैसी प्रजातियों का चयन करके बुवाई करनी चाहिए। फसल को सफेद मक्खी से बचाव के लिए मेटासिस्टा की 3 लीटर मात्रा को 1500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर की दर से 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। पहला छिड़काव फसल बुवाई के 25 दिन बाद अवश्य करें। इसी तरह फसल पर 5-6 छिड़काव करके सफेद मक्खी की संख्या में कमी संभव है, जिससे रोग की रोकथाम में सहायता मिलती है। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान का प्रयोग भी काफी लाभदायक है। इसी तरह फफूंद जनित खर्रा रोग होता है। इस बीमारी का प्रभाव पत्तियों, कोमल टहनियों और फलों पर होता है। रोग की आरंभिक अवस्था में रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों के निचले भागों पर सफेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है। यह चूर्ण या पाउडर आरंभ में छोटे छोटे धब्बों के रूप में उत्पन्न होता है और बाद में पूरी की पूरी पत्ती को ढक लेता है। अधिक रोग संक्रमण की स्थिति में पत्तियों पर वक्रता आ जाती है। अंत में पत्तियां पीली पड़कर मुरझाकर गिर जाती हैं। खर्रा रोग की प्रभावशाली और सस्ती रोकथाम के लिए सल्फेक्स या बेटालेस की आवश्यक मात्रा घोल बनाकर हर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। अच्छे परिणाम के लिए पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत करें, जिससे फसल में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव कर सकते हैं और फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: भिंडी की फसल को बीमारियों से कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा में सुमन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।

0: अब सुनिए सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम। 26 जनवरी से 2400 घंटे उपलब्ध है डीटीएच पर, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
3: हर गुरुवार सुबह 8:30 से 9 बजे सुनिए स्वराज संस्थान भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
4: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
3: हर गुरुवार सुबह 8:30 से 9 बजे सुनिए स्वराज संस्थान भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
5: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और।
6: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथवार्ताः, प्रशासनेन CBSE इति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा OSM इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एक सदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षः क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्ष पदारूढा S राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तः कार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रान्तरे परिषदा गतवासरे 12 कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थं उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनार्थं च अन्तर्जालपटलं आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्यांकितानां उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिकरूपेण विकसिताः। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचितमार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
7: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
6: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्चन्यायालयस्य पञ्चन्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालयीय न्यायविदसमितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्तिविषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य 42 संख्याकेभ्यः उत्कृष्टपञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां 34 ग्राम पञ्चायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च 8 पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामी दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं 6 क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
8: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से। कार्यक्रम वसुंधरा के अंतर्गत वार्ता सुनेगा प्लास्टिक प्रदूषण। सुबह 7:20 पर वार्ताकार होंगी डॉक्टर भावना सिकरवार। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है सुबह 7:30। 8:00 दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभाग। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर प्रातः आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज कार्यक्रम में कलाकार होंगी प्रीति पराड़कर। आप सुनेंगे आपके गाए कुछ भजन। तबला संगति सजग माथुर की होगी। हारमोनियम पर अनिल दंदोतिया और सारंगी पर संगत करेंगे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। प्रातः 9:00 स्टूडियो से हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30। आप सुनेंगे पारुल दीक्षित का गाया राग बिलास खानी तोड़ी। तबला संगति विकास विपट की होगी।

0: जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा सुबह 10 बजे 10:05 पर स्टूडियो से आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर माई फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दिन में 11 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा दिन में 12 बजे संग्रहालय से ये कार्यक्रम सुनेगा दिन में 12:30 पर। दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम प्रसारित होगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में कलाकार होंगे महावीर सिंह भदौरिया। 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। कलाकार होंगे स्वाति पाराशर। आप सुनेंगे आपके काय कुछ भजन। ये तीनों ही कार्यक्रम ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर। 2:15 पर दोपहर समाचार जो दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। चित्रपट संगीत सुनेगा दोपहर 2:30 पर। इस घंटे की खास खबरें लेकर आएंगे दोपहर 2:58 पर। अपराह्न 3 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के अन्य कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। और श्रोताओं, अब एक संक्षिप्त जानकारी। हमारे सांध्यकालीन प्रसारण सभा के कुछ कार्यक्रमों की शाम की सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे 5:02 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:33 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग लेकर आएंगे शाम 6 बजे। फिल्म संगीत सुनेगा शाम 6:30 पर। 7:20 पर स्टूडियो से हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम चौपाल। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम होगा सुर्खियों में। 8:15 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर और News@9 9:00 ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। 9:15 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 9:30 कार्यक्रम सुनेगा चर्चा का विषय है। 10:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम लेकर आएंगे आपकी फरमाइश। राग रजनी शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम सुनेगा 10:30। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बेप्राण। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा, प्रदेश कैबिनेट में लिया गया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें, शुरुआत इंदौर से होगी। और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग

0: कोचिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं प्रदेश में स्वामित्व योजना में जिन भूखंडधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं, उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाए। इसके लिए डीड ऑफ कन्वेंस का निष्पादन और पंजीयन किया जाएगा, ताकि नागरिक आवश्यकता अनुसार गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि संक्रियाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर भी जानकारी दी।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में जन सुनवाई के कैंप और इसके विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रचार माध्यम से इसमें जो सुझाव चाहिए जनता के, वे सारे लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो इस कार्य को पूर्ण करके मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के ओर हम आगे कदम बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है, ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में अब भी लोग जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं, और ये सेवा उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।
2: आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अलनीनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है, वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर

0: 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2312 करोड़ लेन देन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए हैं। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाली स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा के दौरान मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिसके चलते गर्मी और लू का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में महिला स्वसहायता समूह ने गेहूं उपार्जन अवधि में 7,712 किसानों से 5,27,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की। खंडवा में कल युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर ने जिले के रामा में सचिवों और पटवारियों की कल बैठक ली और डिंडौरी में जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट ने लिया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें। शुरुआत इंदौर से होगी और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दे सकता है दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: श्रोता साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम वसुंधरा के अंतर्गत ये वार्ता, प्लास्टिक प्रदूषण। वार्ताकार हैं डॉक्टर भावना सिकरवार।
1: आज के समय में प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। आने वाले समय में यह और भी ज़्यादा भयावह होने वाला है। प्लास्टिक की वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, यानी कि यह पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता है, इसीलिए यह जल और भूमि में भी विघटित नहीं हो पाता। यह वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है, जिससे यह भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्रोतों जैसे कि नदियों, समुद्रों तथा महासागरों में मिल जाता है और इन्हें बुरे तरीके से प्रभावित करता है। प्लास्टिक के निर्माण में कई तरीके के जीवाश्म ईंधनों जैसे तेल और पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। शोधों से पता चला है कि पिछले 2 दशकों में प्लास्टिक का उपयोग काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। प्लास्टिक इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान है और किफ़ायती भी है, इसी वजह से लोगों के बीच प्लास्टिक से बने उत्पाद काफ़ी लोकप्रिय हैं। आइए जानते हैं प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महासागरों में प्लास्टिक के 5 मिलियन से अधिक टुकड़े मौजूद हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार 2050 तक धरती पर मौजूद लगभग हर समुद्री जीव प्लास्टिक खाएगा। विश्व भर में हर मिनट में लगभग 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें बिकती हैं। दुनिया भर में हर मिनट में 2 मिलियन प्लास्टिक बैग का उपयोग हो रहा है। समुद्र से निकलने वाले कूड़े में लगभग 73% प्लास्टिक होता है। एक अध्ययन के अनुसार औसत व्यक्ति हर साल लगभग 70,000 माइक्रोप्लास्टिक खाता है। दुनिया भर में पिछले 50 सालों में प्लास्टिक का उत्पादन दुगना हो गया है। आगे हम जानेंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ने के प्रमुख कारण कौन से हैं। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में से एक है। इससे डब्बे, बैग, फर्नीचर और अन्य कई उत्पाद बनाए जाते हैं, क्योंकि किफ़ायती होने के साथ साथ इन्हें किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, जिससे यह आसानी से जल और भूमि में विघटित नहीं होता है तथा सैकड़ों वर्षों तक ऐसे ही बना रहता है। प्लास्टिक समय के साथ क्षय होता है, परंतु विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक बैग तथा पॉलीथीन से बने अन्य उत्पाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तथा यह मिट्टी और पानी के स्रोतों में मिलकर अधिक प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अनुचित कचरा प्रबंधन प्लास्टिक प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कचरा संग्रह के बाद प्लास्टिक कचरे को अक्सर अनुचित तरीके से निपटाया जाता है, जैसे कि खुले में जलाना और लैंडफिल में डालना, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। विशेष रूप से विकासशील देशों में अपर्याप्त कचरा संग्रह प्रणालियां यूज़ की जाती हैं, जिसके कारण प्लास्टिक और पॉलीथीन सड़कों, नालियों और खुले स्थानों में जमा हो जाता है। उद्योगों से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा निकलता है। यह कचरा हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करता है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन प्रमुख कारणों को जानने के बाद हम जानेंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है मनुष्यों और समुद्री जीवों पर। शोध बताते हैं कि पर्यावरण में पहुंच जाने के बाद प्लास्टिक प्रदूषण स्थायी होता है तथा इसे विघटित होने में 100 से 1000 वर्ष या उससे अधिक समय भी लग सकता है। पर्यावरण में पहुंचकर प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित या टूट जाता है, जिसे हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। इनका आकार 5 मिलीमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होता है। जो प्लास्टिक के कण 1 माइक्रोमीटर या उससे कम आकार के होते हैं, उन्हें नैनोप्लास्टिक कहते हैं। यह माइक्रोप्लास्टिक एवं नैनोप्लास्टिक पर्यावरण के हर पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्रोतों जैसे कि नदियों, समुद्रों तथा महासागरों में मिल जाता है और इन्हें प्रभावित करता है। यही पानी जब हम उपयोग करते हैं तो इस प्रदूषित पानी के प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारी मात्रा में प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे को लैंडफिलों में निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा हवा द्वारा उड़ा लिए जाने पर प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं तथा ये कण मिट्टी में मिल जाते हैं। प्लास्टिक के यह छोटे छोटे रासायनिक टुकड़े मिट्टी के गुणों तथा उसकी उर्वरकता को नष्ट कर देते हैं, जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक बैग और अन्य प्लास्टिक के कचरे जो कि नदियों और समुद्रों में पहुंच जाते हैं, उन्हें समुद्री जीवों द्वारा भ्रमवश अपना भोजन समझकर खा लिया जाता है, जिससे समुद्री तथा नदियों के जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर खुले घूमने वाले पशु जैसे कि गाय, कुत्ते आदि के द्वारा कचरे में फेंका गया खाना अक्सर खाया जाता है। यह पशु प्लास्टिक

के बैग तथा पॉलीथीन को खाने के साथ में खा लेते हैं, जो उनकी आंतों में फंस जाता है, जिससे या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनके अंदर कई तरीके की बीमारी

अन्य प्रभावों जैसे कि कैंसर का खतरा, प्रजनन समस्याएं तथा न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी शामिल हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके हैं। इसमें सबसे प्रथम है व्यक्तिगत प्रयास। इनका उपयोग कम करने के लिए दोबारा उपयोग किए जाने वाले रीयूजेबल बैग, बोतलें और कंटेनर का प्रयोग करना चाहिए। इसकी रिसाइकलिंग के लिए इनको सर्वप्रथम दूसरे प्रकार के कचरे से अलग करें तथा रिसाइकलिंग सेंटर पर जमा करें। प्लास्टिक वेस्ट का सही मैनेजमेंट। इस तरीके के वेस्ट को कूड़ेदान में डालें तथा खाने पीने की वस्तुओं के साथ मिश्रित ना करें और यह सुनिश्चित करें कि यह पर्यावरण में ना जाए। पॉलीथिन के स्थान पर कपड़े के थैले का उपयोग करें। सामुदायिक सफाई अभियान आयोजित करें और लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूक करें। प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास करें और अन्य लोगों को प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए प्रोत्साहित करें। लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में शिक्षित करें तथा इनके कुप्रभावों के बारे में जागरूक करें। इन सभी प्रयासों को मिलाकर प्लास्टिक प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकते हैं और हम सभी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। यह वह समय है जब हमें एक साथ मिलकर प्लास्टिक प्रदूषण जैसे भयावह समस्या का सामना करने की आवश्यकता है। अगर हम सभी इन बताए गए उपायों को अपना लें तो हम प्लास्टिक प्रदूषण के स्तर को कम करके आसानी से इस गंभीर समस्या पर काबू पा सकते हैं।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। प्लास्टिक प्रदूषण वार्ता कर थी डॉक्टर भावना सिकरवार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता साथियों, अब समय हो चला है फिल्म संगीत का।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आपकी कसम का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था और इसे संगीतबद्ध किया आरडी वर्मन ने।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रॉकी से। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था और इसे संगीतबद्ध किया आरडी वर्मन ने। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गंगा की लहरें से ये गीत। स्वर एक बार पुनः लता मंगेशकर का है, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, और इस गीत को संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

अभी आपने सुना फिल्म बड़े दिलवाला का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी वर्मन। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म का नाम है मेरी सनम। इस

मोहम्मद रफ़ी और अर्षा भोसले का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म मेरी सनम से। लीजिए अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथी से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, रचना मजरू सुल्तानपुरी की, और इस गीत को संगीत से सवारा है नौशाद ने।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
5: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तक

0: तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने

0: पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित।

0: एक महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader DK Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela Delcy Rodriguez will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will visit facilities related to the energy, pharmaceutical and automobile sectors. The visit aims to explore opportunities for collaboration and gain insight

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आज कार्यक्रम में कलाकार हैं प्रीति पढ़ारकर और आप सुन रहे हैं आपके गाए भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भजन।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424।

0: 42 पर
1: 8700014242।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का ये अंतिम भजन हम आपको सुनवा रहे हैं प्रीति पराड़कर के स्वर में।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत की यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं, ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। भोपाल के चर्चित ट्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजते हैं श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। दोस्तों, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे सफलता और अनेक अवसर प्रदान करता है। समय अत्यंत मूल्यवान शक्ति है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे सफलता और अनेक अवसर प्रदान करता है। भारतीय काल गणना में समय को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि काल ही विष्णु, शिव और इंद्र हैं, अर्थात समय में सृष्टि के पालन, संहार और संचालन की दिव्य शक्तियां समाहित हैं। काल के अनेक अंग और रूप हैं जो जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें समय के प्रति सदैव सजग, सावधान और अनुशासित रहना चाहिए और हर एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, जहां आप सुनते हैं लेटेस्ट न्यूज़, खबरें, सूचनाएं और ढेर सारा गीत संगीत तो होता ही है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व साइकिल दिवस की। साइकिल सिर्फ एक साधारण वाहन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऊर्जा का प्रतीक है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मोटापा कम होता है, दिल मजबूत होता है, तनाव दूर होता है और फेफड़े शुद्ध हवा में सांस ले पाते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण की बात करें तो साइकिल सबसे अनुकूल साधन है। ये ना तो पेट्रोल जलाती है, ना धुआं उगलती है और ना ही ध्वनि प्रदूषण करती है। एक साइकिल का उपयोग मतलब कम प्रदूषण, स्वच्छ हवा और हरा भरा भविष्य। आज विश्व साइकिल दिवस है और इस वर्ष हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस विषय पर चर्चा करने से उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे और हमारी बात को समझेंगे। आज विश्व साइकिल दिवस है। हरित भविष्य के लिए साइकिल बहुत ज़रूरी है। शहर के कई लोग पर्यावरण की रक्षा के साथ ही फिट रहने के लिए साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग, दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि अब भी अपने दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का ही इस्तेमाल करते हैं। ग्वालियर के जो लोग हैं अब साइकिल को स्टाइल, स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता का प्रतीक मानने लगे हैं। सुबह की सैर के लिए साइकिल अब ग्वालियर की नई पहचान बनती जा रही है। यही कारण कि बाज़ार में भी डिफरेंट टाइप की साइकिलें आ चुकी हैं। देखा जाए तो साइकिल की तीन कैटेगरी मार्केट में उपलब्ध हैं। डिमांड में माउंटेन साइकिल, हाइब्रिड साइकिल और रोड साइकिल। पतले और मोटे पहियों वाली साइकिल हर एक को अपना दीवाना बना रही है। तो श्रोताओं, साइकिल दिवस पर हम, विश्व साइकिल दिवस पर हम बस इतना कहना चाहेंगे कि साइकिल का प्रयोग करने से, उसका उपयोग करने से आप अपनी सेहत तो सुधारते ही हैं, साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी करते हैं। और हमें लगता है कि आपको खुद भी जागरूक होना चाहिए इस पहल के लिए और अन्य लोगों को भी, अपने आसपास दोस्तों को, सभी को जागरूक करना चाहिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर मेरे साथ। दोस्तों आपको पता होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की खासियत आप और हम सब जानते ही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हमारा विकास प्रकृति के साथ है या उसके विरुद्ध? क्या हम अपने बच्चों को केवल सुविधाएं दे रहे हैं या रहने योग्य पृथ्वी भी? इस विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प लें, हम अपने घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे और बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे और उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं बल्कि अपने ही परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे सुंदर और जिम्मेदार तरीका है। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य का पृथ्वी से नाता प्रेम और सौहार्द्र वाला ही रहा है। हमारी परिवार संस्था ने से समझा, जब कोई माँ बच्चे को सिखाती है कि थाली में भोजन का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, जब पिता घर से निकलते हुए अनावश्यक बत्तियां बंद कर देते हैं, जब दादी रसोई के जैविक कचरे से खाद बनाती है, जब बच्चे आंगन में पौधे की देखभाल करते हैं, तो हमारे पुरखों का संदेश अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा बड़े अभियानों की जरूरत नहीं, इसकी नींव परिवार के भीतर पड़ती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए है। ये थीम हमारे घर परिवार से जुड़ती है। दोस्तों प्रकृति की व्यवस्था भी है, जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान प्रकृति के पास पहले से ही मौजूद है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी भोजन और नदियां जीवन को गति देती हैं, पक्षी कीट परागण कर कृषि को सहारा देते हैं। प्रकृति केवल संसाधन नहीं, ये मौन व्यवस्था है जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाती है। जब हम इस व्यवस्था को नष्ट करते हैं तो अपने भविष्य को ही नष्ट करने लग जाते हैं। प्रकृति कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हमारा विस्तारित परिवार है। मिट्टी हमारी रसोई से जुड़ी है, नदी हमारे जीवन से, जंगल हमारे मौसम से और जैव विविधता हमारे भोजन से। यदि परिवार प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने तो समाज और राष्ट्र दोनों अधिक टिकाऊ बन सकते हैं। रसोई पर्यावरण शिक्षा की प्रयोगशाला है। भोजन की बर्बादी रोकना, बचा पानी पौधों में डालना, सब्जियों के छिलकों से खाद बनाना, स्थानीय किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता देना पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। जितना स्थानीय और मौसमी भोजन अपनाया जाएगा उतना ही परिवहन और पैकेजिंग से होने वाला कार्बन उत्सर्जन घटेगा। अब हम बताते हैं नई पीढ़ी का काम क्या है। बच्चों को प्रकृति से जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि मिट्टी, पक्षी, पेड़ और तितलियों से उनका संपर्क ना हो तो पर्यावरण उनके लिए केवल विषय बनकर रह जाएगा। उन्हें पौधे उगाने, पक्षियों की पहचान करने, वर्षा मापने और आकाश देखने की आदत दें। ये अनुभव संवेदनशील नागरिक तैयार करते हैं। दोस्तों चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम में ये गीत सुनने का।

दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सोच का लोकल एक्शन। हम अपने अधिकारों की बात तो करते ही हैं, लेकिन कर्तव्य की बात कौन करेगा? नागरिकों के जो कर्तव्य हैं इतने मुश्किल भी नहीं हैं। विश्व पर्यावरण दिवस धरती के प्रति हमारे कर्तव्य को याद करने का दिन है। बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घर से ही होती है। जब हम दुकान पर पॉलीथीन को मना करते हैं, जब एसी या रसोई के पानी से पौधे सींचते हैं और गैर जरूरी सामान फेंकने के बजाय ज़रूरतमंद को सौंपते हैं, विदेशों जैसी चमकती सड़कें और साफ पार्क चाहिए तो पहले अपनी नागरिक सोच बदलनी होगी। कई देशों और उनके नागरिकों ने खुद को प्रकृति का दोस्त बनाया है। भारत में भी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। अब हम चीन से ही सीख ले सकते हैं। चीन में विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के बजाय विकल्प ढूंढे जाते हैं। वहाँ की सड़कें और पार्क इसलिए नहीं चमकते कि वहाँ सफाई कर्मचारी ज़्यादा हैं, बल्कि वहाँ का हर व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को अपनी समझता है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। ऑस्ट्रेलिया का मॉडल हम बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किसी के पास कीमती वस्तु है जो अब उनके काम की नहीं रही, तो वे उसे कचरे में फेंकने के बजाय उस पर साफ अक्षरों में फ्री लिखकर सोसाइटी की गैलरी या तय स्थान पर सम्मानपूर्वक रख देते हैं। इससे सामान रिसाइकिल भी हो जाता है और किसी ज़रूरतमंद की मदद भी हो जाती है। स्वीडन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ लोग प्लास्टिक की बोतल या कैन खरीदते हैं तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। जब वे खाली बोतल को रिसाइकलिंग मशीन में डालते हैं तो पैसा टोकन या कैश के रूप में वापस मिल जाता है। स्वीडन 99% कचरा रिसाइकिल कर लेता है या उससे बिजली बना लेता है। दूसरे देशों का कचरा भी रिसाइकिल होता है। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सिंगापुर का वर्टिकल गार्डन सुपर ट्री, भारत का कोची एयरपोर्ट, जापान का पानी बचाने की जो अनोखी तकनीक है। नीदरलैंड से भी हम सीख सकते हैं सोलर सड़कें और ग्रीन बस स्टॉप जैसे उदाहरण हैं जिनसे हम बहुत सीख ले सकते हैं। अब हम आपको एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी बताते हैं। बढ़ते शहरीकरण के दौर में जहां लोग प्रकृति से दूर हो रहे हैं, वहीं कई लोग पर्यावरण सहेजने की एक अनोखी पहल भी कर रहे हैं। जोधपुर में जन्मी माधुरी कुमार ने अगस्त 2019 में प्रकृति के प्रति गहरी चिंता के साथ इस सफर की शुरुआत की। उनका मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बदलाव जमीनी स्तर से ही लाया जा सकता है। इसी सोच को हकीकत में बदलते हुए वे अब तक 5,000 से ज़्यादा पौधे लगा चुकी हैं। वे स्कूलों और रिहायशी इलाकों में जाकर बच्चों के बीच पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाती हैं। वे बच्चों को न केवल पौधे बांटती हैं बल्कि उन्हें पालने पोसने की जिम्मेदारी भी सौंपती हैं। उनका मानना है कि जब बच्चे किसी पौधे की देखभाल करते हैं तो उनमें प्रकृति से लगाव पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो जानकारी है उपयोगी साबित होगी और आप इनसे इस स्टोरी से इंस्पायर भी हुए होंगे और भविष्य में अन्य लोगों को भी अवेयर करेंगे इस पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस पर। हम यही उम्मीद करते हैं। चलिए फिलहाल सुन लेते हैं ये गीत।

दोस्तों अब समय हमें इशारा कर रहा है कि हम कार्यक्रम को यहीं विराम दें, लेकिन उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में कुछ नई रोचक जानकारियों, सूचनाओं, संदेशों और ढेर सारा गीत संगीत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है पारुल दीक्षित का गाया राग विलास खानी तोड़ी, तबला संगति विकास वेपट की है।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश कुमार यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से गांवों में किसानों को ई टोकन आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और संतुलित उर्वरक उपयोग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर बीते दिनों व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें थीम पर आधारित इस अभियान के तहत डेंगू जन जागरूकता प्रचार रथ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। प्रचार रथ के माध्यम से डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव संबंधी संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में डेंगू की जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की समय पर सहायता कर उसकी जान बचाने वाले झाबुआ निवासी भावेश सोलंकी को बीते दिनों राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में जिला चिकित्सालय भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, सोनोग्राफी उपकरण क्रय करने, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी ऑडिट संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक 3 माह में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। जिले में आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों राणापुर बस स्टैंड का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, बस संचालन और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने हाट बाजार के दिनों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्याओं से अवगत कराया। जल संसाधन विभाग ने माही परियोजना की नहरों के मरम्मत कार्यों के लिए 16,68,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी की है। लगभग 284 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से वर्तमान में 19,000 से अधिक किसान और करीब 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित हो रही है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत झाबुआ जिले ने प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले के सभी 6 विकास खंडों में आयोजित 559 संतृप्त शिविरों के माध्यम से 32,000 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। अभियान के दौरान आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड और उज्ज्वला योजना की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। वर्तमान में जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और पोटाश सहित विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। किसान ई विकास पोर्टल के माध्यम से ई टोकन प्राप्त कर अपनी आवश्यकता अनुसार उर्वरक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने फल एवं सब्जियों के सुरक्षित भंडारण और उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को धोकर और सुखाने के बाद ही साफ कपड़े या पेपर टॉवल में लपेट कर रखें और प्लास्टिक की बंद थैलियों की बजाय नेट बैग का उपयोग करें। फ्रिज का तापमान निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने तथा सब्जियों और फलों का स्वच्छ उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण बीते दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सहभागिता करते हुए कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जन जागरूकता का सशक्त मंच बन चुका है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर कृषि मंडी परिसर झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय भीली बोली में गीतों और प्रदर्शनी के माध्यम से तंबाकू व अन्य नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कार्यबल की बैठक का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस बैठक में बताया गया कि 28 जून को जिले भर में पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि इसके बाद 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। झाबुआ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख था हरीश कुमार का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत में। आप कार्यक्रम में अपनी फरमाइश हमें व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाते हैं और हम उन्हें पूरी करते हैं। चलिए, देर किस बात की है, हम अब शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत। फिल्म का नाम है सरफरोश। जगजीत सिंह की आवाज़ है, गीतकार है निदा फाजली, संगीतकार जतिन ललित। फरमाइश करता है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से, धनूरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।

शुतो अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब का ये गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया ये गीत था और इसे संगीतबद्ध किया आरडी वर्मन ने। फरमाइश हमारे यानी श्रोताओं की थी, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करमवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू एकम, दमन अभिजोत, ग्राम संदलपुर आदरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव, जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुष वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी चांदनी, लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, शक्ता। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत जो हमने लिया है फिल्म जिस्म से। श्रेया घोषाल की आवाज़ है, नीलेश मिश्रा का लिखा ये गीत है और इसे संगीतबद्ध किया है MM कीरवानी ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है, चक 5 MD पतरोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल, साथ ही इस गीत को पसंद किया है। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव, मेघा साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, SK पप्पी खुराना, कोटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायरा सुरोशी।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म कुली नंबर वन का ये गीत पूर्णिमा और कुमार सानू की आवाज़ों में, गीतकार से समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने करी थी। गांव खाड़िया थाड़ी, जिला सिरसा, हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्य बिचारनिया। साथ ही इस गीत को पसंद किया गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, नवी दिल्ली से, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरीत, रमेश साहू, डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत, जो जिसे गाया है लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम ने। देव कोहली का लिखा ये गीत है और उसे संगीतबद्ध किया है राम लक्ष्मण ने। हमारे इन श्रोताओं की पसंद है ये गीत। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश

इंग्लिश, संध्या इंग्लिश, स्वराज विराज, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबिर, साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतीक्षा संधु और मैक्स।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। कुमार सानू और अलका याज्ञिक की आवाज़ें थीं। और हमारे फरमाइश करने वाले श्रोता साथी हैं, दिल्ली बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, साथ ही इस गीत को पसंद करने वाले हमारे और भी श्रोता हैं। फरमाइश हमें भेजी है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव। आई श्रोताओ, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम फरमाइशी गीत जो हमने लिया है फिल्म हम आपके हैं कौन से। एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ है गीत में और हमारे फरमाइश करने वाले श्रोता हैं लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी काना श्रीमती मनोहर भाई बागरी प्रभुलाल बागरी मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाणकर राही श्रीमती सरिता गुहाणकर प्रिंस एकांश गुहाणकर बदलापुर मुंबई से प्रणीता गुहाणकर सिद्धांत गुहाणकर अर्जुन गुहाणकर। साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई महेश संघई प्रज्ञेश संघई प्रीतेश संघई हरदोई रोड लखनऊ यूपी से मास्टर किल्लू परवेज बेगम इमराना नाज नवाजिश शेख दानिश शेख अमन अफरीदी झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में। और इस फरमाइशी गीत के साथ ही हम कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि हम कार्यक्रम को यहीं विराम दें। अगले कार्यक्रम में कुछ नए फरमाइशी गीतों के साथ हम फिर आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से।
1: के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था ने यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई माह में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2,312 करोड़ लेन देन हुए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही है। केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित राष्ट्रीय महत्व के 13 प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष सर्वाधिक 104 लाख

मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया है। समर्थन मूल्य पर 13,42,000 किसानों द्वारा गेहूं का विक्रय किया गया, जो कि गेहूं विक्रय करने वाले किसान संख्या की दृष्टि से पूरे भारत में सर्वाधिक है। और मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: अपनी। तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और स्टडी कोड आप जानते ही हैं 0755। कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते,
1: हाँ नमस्कार। धन्यवाद
0: स्वागत है आपका हमारे फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
1: दीदी, मैं राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ, यहाँ राजा राम नगर देवास मध्य प्रदेश से।
0: राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आपके कॉल भी बहुत लगते हैं आकाशवाणी में।
1: क्यों बहुत कहाँ, हफ्ते भर पिछले मंगलवार को लगाया था, जिसका आज लगा रहा हूँ दीदी जी।
0: चलिए कोई बात नहीं, एक्चुअली मैंने
1: हाँ
0: पिछले ट्यूसडे को आपकी बात हुई थी और वेडनेसडे को भी देखा था मैंने आपका नाम,
1: नहीं नहीं
0: इसीलिए।
1: नहीं यहाँ नहीं लगाया था
0: चलिए
1: मैंने
0: कोई बात
1: वो,
0: नहीं,
1: और कोई दूसरा नाम से
0: ठीक
1: होगा
0: ठीक
1: किसी का,
0: हाँ हो
1: मैंने
0: सकता
1: तो
0: है।
1: आज बरोबर हफ्ते भर में ही लगाया दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है राजेश जी, क्योंकि यदि कोई भी श्रोता एक हफ्ते के पहले कॉल लगाता है और हम उससे बात कर भी लेते हैं, लेकिन यदि हम
1: जी
0: देखते हैं कि एक हफ्ते के बीच में उसकी बात हो चुकी है, तो हम उसका कॉल फिर प्रोग्राम में नहीं ले पाते, बस इतनी सी बात
1: हाँ, कई
0: है ना।
1: श्रोताओं ने लगाते हैं, खास तो हमारी शिकायत ये है कि दीदी ये जो लेटर का कार्यक्रम हो रहा है फरमाइश का,
0: हाँ
1: उसमें पत्र बिल्कुल नहीं लिए जा रहे हैं, छांट के जैसे वो क्या वही गड्डी, एक ही गड्डी रोज वही ली
0: नहीं नहीं
1: जाती है,
0: ऐसा बिल्कुल नहीं है,
1: ऐसा क्यों
0: इतने
1: हो रहा?
0: हमारे श्रोताओं की गिनती नहीं है, तो वो तो
1: नहीं
0: जो जैसे हाथ में आते जाते हैं वैसे ही लेटर्स पढ़ते हैं,
1: नहीं वहाँ
0: और एक ही
1: वहाँ से
0: गड्डी नहीं
1: भी
0: पड़ी
1: नहीं
0: जाती है, बहुत सारे। आप
1: नहीं
0: कभी आकाशवाणी आएंगे,
1: हम तो होके गए ही हैं वहाँ पे, अभी अक्टूबर में आए थे जैसे स्थापना दिवस पे, आपको
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: मालूम नहीं हो भले
0: हाँ
1: ही,
0: हाँ
1: लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि वही तिलक राणा डोमन ठाकुर, ये जो दो चार नाम रटे हुए रोज के रोज वही के
0: नहीं
1: वही
0: नहीं
1: ली
0: रटे
1: जा रही
0: नहीं
1: है।
0: है वो, ये होता है कि एक ही श्रोता कई बार है ना 50-50 कार्ड डाल देता है, तो
1: नहीं
0: उसका
1: तो है तो
0: नंबर
1: भले ही वो
0: रोटेशन में
1: डाल,
0: आता जाता है।
1: बाकी जैसे ये इंदौर के देवास के यहाँ के भी तो ले लेना चाहिए ना, भले ही वो डाले हजार
0: बिल्कुल
1: डाले, बाकी
0: बिल्कुल,
1: हमारा
0: चलिए
1: क्या होएगा फिर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात
1: हाँ
0: पे बिल्कुल चर्चा
1: और
0: करेंगे और आपका कॉल लिया जाएगा। अभी तो आप ये
1: हाँ
0: बताइए, फोन करें गीत सुने में आपने कॉल किया है, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये दीदी, आज जैसे सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं रही है,
0: हाँ,
1: जैसे कल ही परसों उनका निधन हो गया
0: बिल्कुल
1: है, तो
0: जी,
1: उनकी याद में जैसे गीत ये पहचान पिक्चर का सुनवा दीजिए, वो परी कहाँ से लाऊं, या फिर आया ना तुमको प्यार जताना, ऐसा गीत है मुकेश जी के साथ है उनमें गीत,
0: पहचान फिल्म का यह
1: पहचान पिक्चर
0: ओ परी
1: है। हाँ
0: कर,
1: वाला ले लीजिए, या फिर मुकेश जी के साथ में उनका ड्यूएट भी है
0: हाँ,
1: पहचान पिक्चर का, उनका गाया हुआ गीत सुनवा दीजिए, सुमन
0: अच्छा ठीक है। और
1: कल्याणपुर जी को समर्पित है ये, सेकंड
0: हाँ कौन सा वाला, सेकंड कौन सा बोला है आपने?
1: ये आया ना हमको प्यार जताना, ऐसा
0: अच्छा
1: गीत है।
0: ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बिल्कुल ये गीत सुनवाएंगे।
1: ये हमारी बात थोड़ी सी रख देना मैनेजमेंट के सामने,
0: बिल्कुल
1: ये
0: रखेंगे,
1: लेटर के बारे में आरजे लेटर बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, एक एक गीत पे एक ही लेटर लेते हैं वो।
0: चलिए बिल्कुल हम बात करेंगे इस विषय पे। राजेश जी
1: हाँ
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में होंगे। जिस
1: धन्यवाद।
0: तरीके से आपसे बात कर रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा ही लेटर्स में भी हो जाता है। ठीक
1: हाँ
0: है, चलिए
1: यूँ
0: नमस्कार
1: धन्यवाद दीदी।
0: जी, नमस्ते।

0: जी नमस्ते, मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे। संगीता
1: छतरपुर से सुनीता पटेल, अनीता,
0: जी, संगीता
1: संगीता।
0: जी मैम। जी
1: चलिए संगीता, आपसे पहले भी बात हो चुकी है हमारी, है ना?
0: ए, आप कविता मैम बोल रहे
1: हाँ
0: हैं
1: जी।
0: जी?
1: और कैसी हो संगीता?
0: जी ठीक है मैम।
1: और आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो? अच्छा,
0: आज सुनना चाहते हैं करण अर्जुन फिल्म का
1: कौन सा वाला गीत इसका?
0: बंधन, दिलों का बंधन।
1: अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत है ये। बंधन तो
0: मैम
1: प्यार का बंधन
0: आपके
1: है।
0: मौसम कैसा है?
1: मौसम में गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है ऐसा कह सकते हैं। बारिश बारिश हो
0: जी
1: जा रही है बीच बीच में, आंधी
0: मैम, यहाँ भी
1: तूफान।
0: थोड़ी राहत मिली है क्योंकि पानी 2-3 दिन बरसा है।
1: हाँ, और आंधी तूफान टाइप बहुत मौसम ऐसा हुआ है
0: जी,
1: ना।
0: दोनों साथ में एक आए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो संगीता जी, कल के प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत बिल्कुल सुनिएगा, ठीक है? कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: जी, थैंक यू मैम।
1: ओके।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका। आप शिव नारायण तिवारी जी बोल रहे हैं?
1: जी मैम, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पहचाना आपने।
0: जिस तरह से हमें श्रोता पहचान जाते हैं आवाज से, कई बार हम लोग भी है ना अपने श्रोताओं की आवाज पहचानने लगते हैं।
1: मैम मालूम चल गया था कि आप आज प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में हैं।
0: अच्छा ऐसा है, अरे वाह क्या बात है।
1: हाँ, तो
0: और
1: मैंने
0: क्या
1: किया
0: हाल है आप
1: जवाब।
0: सभी के? हाल
1: जी
0: कैसे हैं आप सभी के?
1: बढ़िया है हाल मैम, बहुत बढ़िया। अब तो गर्मी थोड़ी कम हो गई है।
0: हाँ हल्की सी कम हुई है।
1: काम
0: और कामकाज कैसा चल रहा है?
1: काज बढ़िया चल रहा है, कथा वार्ता पूजा होती रहती है, पंडिताई चलती रहती।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अच्छा बताइए शिवनारायण जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आप सुनवाए आज नंदिनी को डेडिकेट और रानू गुप्ता जी को, आपको
0: हाँ
1: भी।
0: हाँ थैंक यू।
1: और आज का गीत है वो है खतरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा ठीक है बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसका कौन सा गीत?
1: तुमसे बना मेरा जीवन।
0: बहुत अच्छा गीत है तो,
1: जी
0: और मिल भी गया है हमें तो, ये हम आपको जरूर सुनाएंगे।
1: जी जी
0: ठीक है चलिए, तो फिर कल के प्रोग्राम में सुनिएगा अपनी पसंद का गीत। थैंक यू,
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। अरे
0: कौन है ये इतनी बार नमस्ते करने वाले हमारे श्रोता?
1: मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल। फूलचंद जी, आपने बहुत टाइम बाद बात की है हमसे।
1: लगता है कविता मैडम बोल रही हैं आप।
0: जी हाँ बहुत पहचाना आपने, थैंक यू वेरी मच।
1: मैं कविता जी आपसे बात करने को तड़प रहा था।
0: सच में?
1: सच में बिल्कुल तड़प रहा था कि मैं क्या बताऊं कविता जी से, कैसे बात होगी, कब आप कविता जी का नंबर लगेगा, कब मेरी बात हो जाएगी। और आज मेरा ईश्वर ने सुन लिया।
0: देखिए इतना अच्छा, तो कुछ अच्छा अच्छा सोचा होता ना, इतनी सी बात में ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई।
1: कविता जी, वाकई में जो है आपकी आवाज बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रिय है।
0: थैंक यू वेरी मच। और सुनाइए, मौसम कैसा है छतरपुर का?
1: कविता जी, मौसम तो बड़ा ही सुहावना है और बड़ा ही लुक्का छुपा वाला मौसम है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बादल छुप जाते हैं, कभी बादल फिर आ जाते हैं, और दोपहर में थोड़ा गर्मी होती है और शाम सुबह ठंडी होने लगती है।
0: बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही है शाम को तो।
1: जी, और कुछ पानी यानी हमारे यहाँ छतरपुर जिले में गिर गया है, और खजुराहो का भी मौसम नजारा बहुत ही गलत गजब है। अब तो आपका घूमने का मौका आ गया है।
0: अब तो आना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जून लास्ट वीक में पक्का प्लान करेंगे हम खजुराहो आने का।
1: जी, बिल्कुल, खजुराहो के मंदिर आपको बुला रहे हैं कि कविता जी आइए आइए आप, हम जो है, और आप जल्दी ही आएंगी लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फूलचंद जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल कविता जी, फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी,
0: अच्छा ये क्या बात है, आज
1: और
0: तो है ना ये।
1: गीत गीत
0: हाँ,
1: के बोल हैं कि पास पास वो आने लगे जरा जरा।
0: मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।
1: जी,
0: हाँ जी, मिल गया हमको ये गीत तो, बहुत
1: और
0: अच्छा है।
1: ये गीत कविता जी आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और दिनकर सिंह जी हैं,
0: हाँ
1: और विजय कुमार पांडे जी हैं, और सभी जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा। और पूनम बहन है हमारी कानपुर से, तो
0: अच्छा,
1: उनको भी डेडिकेट रहेगा, क्योंकि रेडियो से हमारे इतने सारी बहनें, इतने सारे मित्र मिल गए हैं कि हम कभी सोचते भी नहीं थे कि इतने
0: बिल्कुल
1: कहाँ
0: सही
1: मिलेंगी।
0: बात है, वाकई एक बहुत अच्छा
1: जी जी
0: परिवार है हमारा रेडियो,
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल। और देखिए कि कविता जी, रेडियो श्रोता जो बनता है वो बहुत ही दिलदार होता है जब बन पाता है।
0: बिल्कुल सही बात है ये। चलिए,
1: जी
0: कॉल
1: जी जी
0: करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारे दूसरे कॉलर्स भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनका कॉल लगे। ठीक है
1: जी जी बिल्कुल, सभी
0: जी
1: श्रोताओं का
0: फुलचंद जी,
1: फोन लगे। बहुत
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: कविता जी, आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार,
0: जी आपको भी धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: जिला सिवनी ग्राम पातरफोड़ी से राहुल ध्रुवे बात कर रहा था। ध्रुवे
0: राहुल धुर्वे।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी राहुल, बताइए कैसे हैं आप।
1: अभी तो गर्मी पड़ रही है, थोड़ा मतलब पानी भी गिरा है कल, तो थोड़ा सा ठंडक है जरूर है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले काफी गर्मी थी।
0: अरे भाई, हमने तो मौसम के बारे में थोड़ी ना पूछा है, आपके बारे में पूछा है, आप कैसे
1: हम भी अच्छे हैं मैम अभी तो।
0: हैं चलिए, क्या काम
1: और
0: करते हैं
1: आप?
0: राहुल जी
1: हाँ जी,
0: अभी, आप काम क्या करते हैं।
1: मैं वीडियो कॉन डीटीएच के ऊपर जॉब करता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज।
1: जाने अनजाने मूवी का है, हाँ,
0: जाने अनजाने,
1: पिया पिया वो पिया पिया।
0: एक मिनट हम सर्च कर लें पहले, है कि नहीं। जाने अनजाने, मिल गया, लेकिन इसमें पिया पिया वाला गाना तो नहीं दिख रहा है मुझे।
1: हाँ मैम,
0: आप कोई और, उसका कोई बोल जो शुरू के है ना, वो कुछ और होगा।
1: नहीं, प्रिया प्रिया तू चांद है पूनम का।
0: चलिए मैं एक बार और देखूंगी, नहीं है यहाँ पर उसका। जाने अनजाने जरूर, उसकी शुरुआत क्या जाने अनजाने से है क्या।
1: नहीं, प्रिया प्रिया हो प्रिया
0: छमछम
1: प्रिया,
0: बजे रे पायलिया, उससे है।
1: नहीं,
0: अच्छा, तेरी नीली नीली आंखों के।
1: चांद है पूनम का, ऐसा
0: चलिए
1: है कुछ
0: अच्छा,
1: करके।
0: मैं देखती हूँ जाने अनजाने फिल्म का पिया पिया। यदि
1: पिया
0: ये गीत
1: पिया हो
0: नहीं
1: पिया
0: मिला,
1: पिया तू चांद है पूनम का,
0: ठीक है, और अगर ये गीत नहीं मिला तो फिर कौन सा गीत सुनेंगे आप।
1: इसमें आप मतलब
0: इसी फिल्म
1: साजन का
0: का,
1: घर का कर दीजिए। हाँ,
0: साजन के घर का, उसका कौन सा गीत।
1: इसका नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए।
0: चलिए, गाने तो आपने बहुत ही अच्छे चॉइस किए, ठीक
1: मैम,
0: है।
1: मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ कहिए।
1: इसमें मैंने मतलब इससे पहले 15 दिन पहले कॉल किया था, तो मेरा नाम ही नहीं आ पाया था इससे।
0: कभी कभी ऐसा होता है कि है ना, श्रोता हमारे बहुत सारे हो जाते हैं, उनके कॉल्स हम लोग ले लेते हैं, और जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो हमको सिर्फ 58 मिनट का ये प्रोग्राम तैयार करना होता है, तो कुछ कॉलर्स हमारे छूट जाते हैं इस चक्कर में।
1: तो मैम, मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ
1: अगर मान लीजिए कॉल अगर ज्यादा 11 बजकर जैसे 10:30 से 11 तक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप,
0: जी,
1: तो गानों को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन जो कॉलर हमारे जुड़ते हैं उनको तो मतलब शामिल कर लीजिए, तो ये बेहतर हो पाता है।
0: चलिए कोशिश करेंगे आपकी कही बात पे अमल किया जाए, ठीक है राहुल जी।
1: हाँ जी, दोस्तों का नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल, फटाफट ले लीजिए क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश सागर से नितिन कटारे, और शिमला से रहेंगे राकेश जी।
0: चलिए, धन्यवाद राहुल जी कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: धन्यवाद मैम।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी। आगरा
0: नमस्ते जी।
1: उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ। दीदी
0: राजू।
1: लवानिया,
0: ओके, राजू लवानिया जी, आपसे पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन आज इतना डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है?
1: दीदी मौसम थोड़ा सा खराब हो रखा है। हल्के बादल हैं, रात को बारिश हुई है, बिजली चमकी है, बिजली कड़की है, तो थोड़ा मौसम का
0: चलिए ठीक है। क्या हाल है राजू जी आपके?
1: जी हम तो ठीक है दीदी। और हम जानना चाहेंगे हमारी आकाशवाणी भोपाल टीम कैसी है।
0: हमारी टीम बहुत बढ़िया है, आप सबका स्नेह हमारी टीम के साथ है तो अच्छी ही होगी।
1: बिल्कुल दीदी, हमारी भी यही कामना है, आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें ताकि हमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी सुनने को मिले और आप सब लोग ऐसे ही मस्त मस्त बने रहें, सभी लोग
2: चलिए,
1: फिट और
0: बहुत
1: फिट।
0: बहुत आभार आपका राजू जी, इतनी अच्छी अच्छी विशेष देने के लिए। और बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ कोई भी गीत सुनवा दीजिए, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी अभी इस दुनिया में नहीं रही हैं।
0: बिल्कुल, तो उनको आप श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, हम अपनी तरफ से भी और सभी श्रोताओं की तरफ से भी और
0: बिल्कुल,
1: आकाशवाणी भोपाल की पूरी टीम की तरफ से
0: बहुत
1: हम
0: बहुत
1: उन्हें भावभीनी
0: धन्यवाद, आपने
1: श्रद्धांजलि
0: बहुत
1: देते
0: अच्छा
1: हुए
0: सोचा
1: उन्हें
0: है।
1: याद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा है। हम आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे, कल के प्रोग्राम में आप अवश्य सुनिएगा।
1: ओके दीदी,
0: ठीक,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते
1: नमस्ते मैडम। गाना
0: नमस्ते। हाँ,
1: सुनना है मैडम?
0: नाम तो बताइए।
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से।
0: हसीना भी मंसूरी?
1: अमीना, अमीना
0: अमीना।
1: जी मैडम, उस दिन में लगाया मैंने।
0: अच्छा, हाँ जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैडम, अब तो आपकी दुआ है।
0: इंदौर से बोल रही हैं ना?
1: हाँ, इंदौर से बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से। बहुत दिन
0: चलिए,
1: में लगाया मैडम, थोड़ी तबीयत ऐसी थी मेरी।
0: क्यों, क्या हो गया था आपको?
1: अरे, मेरे को ये थोड़ा सा जी अकड़ा था, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो एकदम से उल्टी होने लगी, तो भर्ती कर दिया था अस्पताल में। तो आपका
0: ओहो,
1: आराम है मैडम, बहुत आराम है आपको।
0: चलिए, लेकिन रेगुलर अपना ध्यान रखा करिए और बीपी की दवाई टाइम से खाया करिए।
1: जी मैडम, गोली तो खाती हूँ, मतलब थोड़ा कमजोरी हो गई थी ना।
0: हाँ, चलिए, आप पहले अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखिए, यही हम सबकी दुआएं हैं, ठीक है?
1: जी मैडम,
0: चलिए, अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगी?
1: फिल्म इज्जत गाने के बोल,
0: हाँ,
1: क्या मिलना है ऐसे लोगों से
0: अच्छा
1: जिनकी, हाँ, जिनकी फिजरत छुपी रहे। जी
0: अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल, अवश्य जरूर सुनवाएंगे ये गीत हम आपको। और अगर ये गीत ना मिला तो क्या
1: मैडम, आपकी आवाज
0: मिलना?
1: बिल्कुल धीरे आ रही है, बड़ी मुश्किल आ
0: हाँ,
1: रही है।
0: सही कह रही हैं आप, आवाज़ बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है अमीना जी, थैंक यू, कल के प्रोग्राम में अपना गीत सुनिएगा।
1: जी मैडम, थैंक
0: नमस्ते।
1: यू मैडम,
0: ओके,
1: आपको भी नमस्ते मैडम।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो,
0: जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: मैं वरेला से वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ।
0: मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये आवाज सुनी सुनी है।
1: हाँ मिता दीदी, नमस्ते नमस्ते। बहुत दिनों बाद आई आप।
0: देखो वंदना जी, फिर आपको गलतफहमी हो गई। जी
1: फिर कविता दीदी बोल रही ना,
0: हाँ
1: आपसे ही बात हुई थी मेरी कविता दीदी।
0: बिल्कुल, वो तब भी आप ऐसी कंफ्यूज हुई थी। तो
1: हाँ, बिल्कुल देखा। उसके बाद आज लगा रही हूँ मैं फोन।
0: आप ये बताओ, आपको अमिता दीदी में और कविता दीदी में फर्क नहीं नजर आ रहा?
1: आवाज क्या है दीदी, स्लो आती है इसमें, और जब रेडियो पे सुनते हैं तो क्लियर आवाज आती थोड़ी।
0: अच्छा, ये
1: हाँ
0: चक्कर है। चलो कोई बात नहीं। हाँ वंदना जी, बताओ
1: आज
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुना दी, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी
0: अच्छा,
1: चोरी मेरे दिल में समाते हो।
0: कौन सी फिल्म का है ये गाना?
1: गाना
0: खैर,
1: पिक्चर का
0: मिल
1: नाम तो
0: जाएगा
1: नहीं है दीदी आज, तो
0: मिल
1: दूसरा बता
0: जाएगा।
1: दूँ?
0: हाँ दूसरा भी बता दो, वैसे ये गाना भी मिल जाएगा। हाँ
1: मिल जाएगा दूसरा।
0: लेकिन एक और बता दो फिर
1: फिर
0: भी।
1: वो कौन सा है, तू गैरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी।
0: ओ भगवान, कहाँ कहाँ के ढूंढ के ला रही हूँ वंदना जी ये गाने। नहीं नहीं सिंपल नहीं, आप तो बिल्कुल कठिन से कठिन दीजिए, तगड़ा होना चाहिए।
1: अभी रेडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे, पुराने पुराने, तो
0: हाँ तो आपने
1: मुझे तो
0: नोट
1: बहुत
0: कर लिया
1: पुराने
0: कि
1: पुराने गाने
0: आप?
1: भी बहुत पसंद है। केएल सहगल का है गाना,
0: हाँ,
1: रूही रूही तू मेरे सपनों की रानी। तो
0: ओ
1: बहुत अच्छा लगता है मुझे वो रूही रू। और भी
0: हाँ,
1: पुराने पुराने गाने मैंने एक दिन वो फरी उसका कौन है वो गायिका,
0: भाई सुनो, गैरों पे तो ये वाला गाना मेरे सामने आया है, गैरों पे करम।
1: गैर पे करम नहीं,
0: हाँ
1: तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तू औरों की क्यों हो गई।
0: किसकी आवाज में है ये भी नहीं
1: ये
0: पता।
1: वो हीरो है जॉय मुखर्जी की, कौन है उनकी पिक्चर का गाना है शायद।
0: कोशिश करते
1: और
0: हैं।
1: अच्छा से अच्छा ठीक है, सिंपल सा बता देती हूँ, जल्दी मिल जाए। जो कौन सा बता दूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
0: देखो
1: अभी
0: वैसे तो
1: डबल
0: आपका
1: टेंबल
0: ये
1: सुना
0: पहले गीत
1: दीजिए
0: मिल
1: फिर आप
0: जाएगा,
1: फोन
0: जहां
1: कर
0: मैं
1: लीजिए।
0: जाती हूँ वहीं चले
1: वहीं
0: आते
1: चले
0: हो।
1: आते हो, चोरी चोरी दीदी, आप
0: चलो
1: तो
0: टेंशन नहीं लो,
1: दिल
0: मिलेगा
1: में
0: यही गाना
1: समाते हो, आप
0: मिलेगा।
1: है शॉर्टिंग के प्रोग्राम।
0: अपन ढूंढ के लाएंगे।
1: आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम देते, कल तो मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, तो कल तो मैं फोन करेंगी, कल का सुन नहीं पाई, तो मेंटेनेंस चल रहा, तो बिल्कुल मुझे बहुत लगा कि
0: तो
1: इन्वर्टर भी
0: आप है
1: बंद
0: ना,
1: हो गया
0: न्यूज़
1: था, हो गया
0: न्यूज़ ऑन
1: चेंज हो
0: एआईआर
1: गया।
0: एप्लीकेशन पर नहीं सुनते क्या मोबाइल पर?
1: मोबाइल में दीदी हम डाउनलोड कर हो ही नहीं पा रहा मेरे मोबाइल में, कैसे करते वो, मैंने कई
0: अरे
1: बार किया नहीं होता।
0: नहीं, डाउनलोड हो
1: हाँ
0: जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। और फिर उसको है ना सिलेक्ट कर लो, लाइव पर जाकर भोपाल सिलेक्ट कर लो,
1: अच्छा
0: और बहुत अच्छे से सुनाई देता है, बहुत क्लियर सुनाई देता
1: ठीक है, मैं आज ही
0: है
1: करवाती
0: ना।
1: हूँ, मैं करती हूँ। प्ले स्टोर में जाके भी किया, पर वो
0: प्ले
1: चला
0: स्टोर
1: रहा
0: में
1: था, पर
0: जाके ही
1: वो
0: करना पड़ेगा,
1: नहीं
0: न्यूज़ ऑन
1: मैंने किया
0: एआईआर।
1: नहीं हुआ। मुझे तो
0: अच्छा
1: इतना वो है, जब एक भी अगर मिस हो गया, आज किस किस के गाने आए, बहुत उम्मीद रहती है, तो लगा रहता है, पता नहीं जो
0: चलो,
1: कैसे
0: एक बार और
1: किसी।
0: कोशिश करना, पक्का होगा। ठीक है,
1: जी नहीं, आप कर दीदी नमस्ते, और आप
0: नमस्ते। कोई
1: पहचानने में गलती हो गई तो सॉरी।
0: बात नहीं, कोई बात नहीं,
1: अमिता
0: ओके।
1: दीदी क्या है, मैं अमिता दीदी से बहुत बात करती हूँ, मतलब जितने बार भी कभी फोन लगाया अमिता दीदी और आप रहती हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हो, रेडियो इसमें मोबाइल में बहुत दबी आवाज आती है।
0: चलो कोई बात नहीं, ओके
1: ठीक है
0: ओके,
1: दीदी,
0: थैंक यू,
1: नमस्ते,
0: बाय
1: कल
0: बाय।
1: सुनेंगे आप।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसी के साथ अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में विद्यालयों महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। वन विभाग ने गुप्तचर ऐप विकसित किया है। अब स्थानीय नागरिक स्वयं को गुप्तचर के रूप में पंजीकृत कर वन संरक्षण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ईकेवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। श्रमिकों को अपनी लंबित ईकेवाईसी 1 माह के भीतर पूर्ण करनी होगी और भोपाल में 6 और 7 जून को राज्य स्तरीय

0: आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में प्रदेश में उत्पादित विभिन्न आम की किस्मों एवं उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है, आवाज सुमन कल्याणपुर की है, इंदिवर के बोल हैं और फिल्म का नाम है रॉयल मेल। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और इनके परिवार के सदस्य भाटापारा दत्तरेंगी से इस गीत को सुनना चाहा है। द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं रॉयल मेल फिल्म का ये गीत।

आपको सुनवा रहे हैं उत्सव फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। वसंत देव का लिखा हुआ गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शोभा शारदा दामिनी इस गीत को सुनना चाहती हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं उत्सव फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अंगूर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। गुलजार का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। ये पत्र हमें लिख भेजा है रुचि और इनके परिवार ने। रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, स्वाति, माही, छुटकी, शरद और संपूर्ण माखीजा परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं धमतरी बनियापारा से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर अंगूर फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बुढ़ा मिल गया फिल्म का वो गीत जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। संगीत आर डी बर्मन का है, गीत लिखा है मजरूह ने। पसंद आप सब श्रोताओं की। अयूब खान, इरम, गुड़िया, शोएब, नावेद और जीशान ने इस गीत को सुनना चाहा है। ये पत्र हमें मिला है करूला मुरादाबाद से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं जंतर मंतर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी ने, हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत है शरद मलिक का, सरदार मलिक का। पसंद आप सब श्रोताओं की, प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, इन्होंने नांदेड़ से ये गीत सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि इस गीत को सुनना चाहती हैं, तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म जंतर मंतर से।

0: अब आपको सुनवा रहे हैं द ट्रेन फिल्म का वो गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का, पसंद आप सब श्रोताओं की। रुचि शुक्ला, रीना शुक्ला गीत और कृष्णा शुक्ला ने ये गीत पसंद किया है रीवा से। दिल्ली शहर से ये गीत सुनना चाहते हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए सुनते हैं द ट्रेन फिल्म का ये नगमा।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं

0: तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे।
1: द ट्रेन फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण इस अंतराल के बाद होगा।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भो।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं

0: पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता पैसों की लालच में आकर सारे का दूसरा निकाह रसूल से करवाना चाहती है, जो औरत को पांव की जूती से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इस बात का पता चलने पर मुश्ताक को सदमा पहुंचता है और वो बीमार पड़ जाता है। अब आगे
1: कुछ बात करनी है तुझसे।
2: हाँ बोल।
1: मैं जो सुन रही हूँ क्या वो सच है?
2: क्या सुन रही है तू?
1: तू मेरा दूसरा निकाह पढ़वाने की बात कर रही है?
2: हाँ सच सुना है तूने।
1: मुझसे पूछे बगैर तू मेरा निकाह तय कैसे कर सकती है अम्मी?
2: मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना और मैं जो भी कर रही हूँ वो तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ।
1: अब इसमें मेरी क्या भलाई है? तू एक भलाई तो पहले ही कर चुकी।
2: बस कर, आज तक उस मुश्ताक को भूली नहीं है। कान खोल कर सुन ले, तेरा निकाह अब उसी जगह होगा जहाँ मैं चाहूंगी।
1: मैं ये निकाह नहीं करूंगी।
2: तेरा निकाह रसूल से ही होगा और अपने मन की कोई बात हो भी तो उसे वहीं दफन कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी।
1: मेरा निकाह मुझसे पूछे बगैर तू कैसे कर सकती है अम्मी? मैं ये निकाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
2: अरे तुझसे पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, और मैं तेरी माँ हूँ, जहाँ कहूंगी वहीं तेरा निकाह होगा।
1: लेकिन मैं उस रसूल से निकाह नहीं कर सकती।
2: क्यों, क्या कमी है उसमें?
1: तू खूब जानती है अम्मी उस रसूल में क्या कमी है। गांव का बच्चा बच्चा जानता है नूरी के साथ क्या किया उसने। ये बात क्या छिपी है किसी से?
2: अरे जा, नूरी बदजात थी, रसूल से उल्टा जुबान लड़ाती थी। रसूल ने जो किया सही किया। औरत को अपने शौहर की बात पर ही चलना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे वही सजा मिलती है और उसका हश्र नूरी जैसा होता है। पर रसूल तुझे खुश रखेगा बेटी, उसके पास पैसा भी खूब है, मेहनत करता है, कमाता है। तुम दोनों बहुत बहुत खुश रहोगे।

0: नहीं अम्मी, पैसा कमाने से कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अम्मी, पूरे गांव में एक भी आदमी ना होगा जो रसूल के बारे में अच्छा सोचता हो, और तुम मेरा निकाह उसी के साथ पढ़वाना चाहती है?
1: अरे लोगों का क्या, लोग उसके पैसों से जलते हैं, उसकी तकदीर से जलते हैं।
0: तू अपने आप को धोखा दे रही है अम्मी, लेकिन मैं कह देती हूँ, मैं उस रसूल से कभी निकाह नहीं करूंगी।
1: बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे रसूल से निकाह करना होगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
0: मैं इस फैसले को नहीं मानती।
1: तो उस मुश्ताक की बांदी बनकर रहती, उस घर में नौकरानी बनकर रहती।
0: अम्मी,
1: भूल जा उस मुश्ताक को, अब तेरा निकाह रसूल से होगा।

सारे के लाख मना करने के बावजूद फाता उसका निकाह रसूल के साथ कर देती है। निकाह के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों में अनबन शुरू हो जाती है।

0: खाना बन गया क्या? बड़ी भूख लगी है। साराय, साराय, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। अरे अरे, क्या सोच रही है? खाना दे।
1: हाँ लाती हूँ।
0: और ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है तूने?
1: वो कुछ नहीं, बस।
0: कुछ नहीं? अरे तो क्या तू हंस नहीं सकती? रोनी सूरत बनाकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है।
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खाना खाओ।
0: अरे रोनी सूरत लेकर खड़ी है और मैं खाना खाऊं?
1: खाना क्यों फेंक दिया?
0: चुप कर। रहती है मेरे साथ और रोती है उस मुश्ताक को याद करके। अब अगर मेरे सामने आई तो अच्छा ना होगा। अब जा यहां से। ऐसे क्या देख रही है मुझे? चल।

0: अब्बू अब्बू खाना खा लो, काम पर भी तो जाना है।
1: ला दो बेटा।
0: अब्बू मायूस लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है?
1: ठीक ही हूँ बेटा, तबीयत का क्या होता है, तकदीर में जो लिखा है वही तो देखूंगा।
0: ऐसा क्यों सोचते हो अब्बू? दिल छोटा ना करो, जब तकदीर में ऐसा ही लिखा था तो इसके अलावा और क्या होगा, बस भुगतना तो है ही।
1: रसूल कब आ रहा है?
0: पता नहीं अब्बू, कहा तो था कि एक महीने में आ जाएगा।
2: सारे सारे
0: अब्बू लगता है रसूल आ गया।
1: जा उसे देख बेटा, किसी चीज की जरूरत हो उसे।
0: हाँ तुम जाओ अब्बू, मैं देखती हूँ।
2: साराय साराय
0: आती हूँ।
2: साराय साराय
0: कहा ना आती हूँ, फिर शोर क्यों मचा रहे हो?
2: क्या कर रही थी?
0: अब्बू को खाना खिला रही थी।
2: जब मैं आया तो पहले मेरे पास आना चाहिए था, तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं है।
0: चाय लाऊं?
2: रहने दे, मेरे आते ही तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बच जाते हैं? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वास्ता पड़ा था तुझसे। अरे अब कहाँ जा रही है?
0: रसोई में।
2: चुपचाप यहीं खड़ी रह, समझी?

0: हमेशा मुझसे इसी तरह क्यों बोलते हो?
1: तो चूमो तुझे? अरे सूरत तो ऐसे बनाए रहती है जैसे मैं मर गया हूं। अरे जा जा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, जा उसी के पास जा जिसने तुझे थूक दिया है।
0: रसूल, अपने दिमाग की गंदगी अपने पास रखा करो।
1: अभी बताता हूँ तुझे।
0: रसूल,

0: चाय।
1: रहने दो बेटी, मन नहीं है।
0: अरे चाय पी लो।
1: अरे कहा ना रहने दो।
0: क्या हुआ, चाय क्यों नहीं पी रहे?
1: मन नहीं है।
0: अब मन नहीं है या और कोई बात है?
1: कोई बात हो भी तो तुम्हें क्या, तुम अपना काम तो कर ही रही हो।
0: तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
1: मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो, पर तुम जानना नहीं चाहती।
0: अरे तुम बेकार की बातें सोचकर अपना मन खराब कर रहे हो। मेरी मानो तो जैसा चल रहा है चलने दो।
1: अरे सारे को देखो।
0: क्या हुआ है सारे को, अच्छी भली तो है।
1: तुम माँ हो उसकी या?
0: चुप करो, कभी तो मुबारक शब्द बोलो।
1: सारे के साथ रसूल कैसा बर्ताव करता है जानती हो?
0: अरे रसूल ठीक है, सारे ही उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती तो ऐसा होगा ही।
1: फाता, तूने पैसों के लालच में आकर ऐसा किया है, और अब रसूल के चंद पैसों ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जो तुम अपनी बेटी के दुख को नहीं देख पा रही हो। तुमने माँ होकर सारे को एक जानवर के हाथ में दे दिया है, जो हर बार उस पर जुल्म करता है, मारता पीटता है, और सारे पल पल घुटती है।
0: अजी हटो भी, अब रहने भी दो। रसूल इतना बुरा नहीं, सारे अगर दो अच्छे बोल बोल लेगी तो जुबान नहीं कट जाएगी उसकी। हमेशा रोनी सूरत लेकर जाती है उसके पास, तो क्या बुरा करता है वो? अरे औरत उसी का प्यार पाती है जिसका मर्द उससे प्यार करे, पर सारे की ऐसी सूरत देखकर किसे प्यार आएगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं?
1: इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुमने अगर सारे का निकाह रसूल से ना किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता।
0: अरे जाने दो, मैंने सारे की खुशी के लिए किया है ये सब।
1: तुम माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर होती तो सारे का दुख देखती। मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता।
0: हाँ हाँ, अगर नहीं देख सकते तो सारे को समझाओ कि वो रसूल से अच्छा बर्ताव करे, और नहीं तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो।
1: मैं जा रहा हूँ, पुरानी कोठी में रह लूंगा, पर यहाँ रहकर सारे का दुख नहीं देख पाऊंगा।
0: ठीक है, जाओ। बड़े आए प्यार जताने वाले। अरे जितना पैसा रसूल देता है हमें उसका एहसान मानना चाहिए।

0: अब्बू
1: कौन सारे?
0: हाँ
1: आ गई बेटी,
0: खाना खा लो अब्बू।
1: रख दे बेटा।
0: अब्बू एक बात पूछूं?
1: हाँ
0: सच सच बताएंगे?
1: पूछो बेटी, क्या बात है?
0: अब्बू सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा दूसरा निकाह क्यों किया?
1: ये सवाल मुझसे ना पूछा कर बेटी।
0: क्यों ना पूछूं अब्बू?
1: मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा।
0: मैं एक लड़की हूं, इसीलिए ना आप पर बोझ बन गई थी। ऐसा ही था ना अब्बू?
1: नहीं,
0: लड़की सिर्फ जुल्म सहने के लिए होती है क्या? क्या लड़की की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? वो अपनी खुशियों को अपने तरीके से नहीं पा सकती, वो खुलकर हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों घोटती रहती है, बस पिसती रहती है, महज देह बनकर। आपने सब जानते हुए भी आप चुप रहे, मेरी बर्बादी देखते रहे आप। क्यों अब्बू, क्यों क्यों होने दिया आपने मेरा दूसरा निकाह उस रसूल के साथ? क्यों अब्बू, क्यों?
1: बेटा मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस इतना जान ले कि तू अपनी अम्मी की नाजायज इच्छाओं की बलि वेदी पर चढ़ी है। वो चाहती है कि उसका जमाई उसे खूब पैसा दे। रसूल तेरी माँ को पैसा देता है और यही वजह है कि वो तुम पर होने वाले जुल्मों को अनदेखा करती है। पैसे के लालच ने उसे माँ से शैतान बना दिया है बेटी।
0: शैतान कुछ क्यों नहीं किया अब्बू?
1: मैं मजबूर हूँ बेटी। तू जा, घर जा बेटी।
0: अब्बू आप रो रहे हैं। अब्बू
1: नहीं बेटी, रो नहीं रहा हूँ, अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ।
0: अब्बू
1: तू जा बेटे, तुझे देर हो रही है। ये तूने क्या किया इस फूल सी बच्ची

0: कुछ समय बाद मुश्ताक के बीमार होने की खबर सुनकर हसन बट उससे मिलने जाता है।
1: अरे फजी, जरा देखना तो कौन है।
2: देखती हूँ। अरे हसन भाई जान, आप? सलाम।
3: वालेकुम सलाम।
2: आइए अंदर आइए।
3: क्या करीम भाई जान घर पे नहीं है?
1: अरे अरे हसन भट, अस्सलाम वालेकुम। आइए।
3: वालेकुम सलाम।
1: आइए आइए, बैठे बैठे। हाँ भाई। अरे भाई फजी, जरा दो कप चाय तो बनाओ।
2: जी।
3: सब ठीक तो है ना?
1: बस सब ठीक है। कैसे हो सर बट? फाता कैसी है और सारे?
3: सब ठीक है।
1: आपके चेहरे पर मायूसी दिख रही है।
3: पहले ये बताइए, मुश्ताक कैसा है?

0: सुना है उसकी तबीयत खराब है, सो मिलने आ गया।
1: ओ, बस क्या बताऊं, दवा असर ही नहीं कर रही है, दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है।
0: किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते?
1: हाँ, बस वो इंतजाम में लगा हूँ, कुछ पैसे हाथ आ जाए तो दिखाऊंगा। मुश्ताक के बीमार हो जाने से भाई घर की माली हालत गड़बड़ा गई है।
0: करीम भाई, आप पैसों की चिंता ना करें, हम मदद करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ।
1: आप,
0: उनका बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मुश्ताक जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
1: अरे नहीं नहीं हसन भट्ट, आप तकलीफ ना करें।
0: तकलीफ कैसी, मुश्ताक के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है, मुझे ना रोके।
1: अब जैसा आप बेहतर समझें।

0: अरे करीम भाई, ये है डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: आइए डॉक्टर साहब, मुश्ताक उस कमरे में है।
2: जी अच्छा,
0: आइए।

0: मैंने मुश्ताक को देख लिया है
1: जी।
0: मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो मुश्ताक एक सप्ताह में दौड़ने लगेंगे।
1: आमीन। डॉक्टर साहब आपकी फीस
0: आप फिक्र ना करें, हसन मंट ने फीस पहले ही दे दी है, आप दवा मंगवा कर समय से दवा दें। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरत लगे तो मुझे बुलवा भी लीजिए।
1: जी
2: अच्छा डॉक्टर,
1: जैसे आप बेहतर समझे।
2: ये दवा ले, समय पर दवा देते रहिएगा, मुश्ताक जल्द ठीक हो जाएगा।
1: हसन भट्ट आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, मेरे समझ में नहीं आता।
2: अरे ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा करीम भाई अब मैं चलूंगा।
1: खुदा हाफिज।
2: खुदा हाफिज।
3: कौन?
0: मैं मुश्ताक।
3: मुश्ताक मुश्ताक आप?
0: सारे तुम? अब्बू कहाँ है?
3: अब्बू बाहर गए हैं, आते ही होंगे, आओ बैठो।
0: कुछ बोलो सारे, नई जिंदगी कैसी चल रही है?
3: बेहतर है।
0: सारे एक बात पूछूं, सच बताओगी?
3: पूछो।
0: तुम मुझसे तलाक लेकर खुश हो? अगर ऐसा है तो मुझे किसी से कोई शिकायत ना होगी।
3: तुमने मुझसे दगा किया है मुश्ताक, प्यार का ढोंग रचते रहे हो, इंतजार भी ना कर सके और तलाकनामा भेज दिया।
0: सारे मेरे प्यार पर तोहमत ना लगाओ, तुमने तलाकनामा भेजा और मैंने तो सिर्फ तुम्हारी रजा मानकर उस पर दस्तखत किए हैं।
3: क्यों झूठ बोलते हो मुश्ताक, अपने गुनाह को मेरे सर क्यों मढ़ रहे हो? मैं ऐसा क्यों करती भला? मैं तुमसे तहे दिल से मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूँ।
0: सारे अगर तुमने तलाकनामा नहीं भेजा तो फिर हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ सारे कोई है जिसने हमारे बीच ये दूरियां पैदा की हैं।

0: ऐसा कौन हो सकता है?
1: अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर तुम्हारी अम्मी ही ऐसा कर सकती है।
0: क्या?
1: हाँ, जैसा लोगों ने मुझे बताया है कि रसूल के पैसों की वजह से तुम्हारी अम्मी ने पहले हमें तलाक दिलवाया और फिर तुम्हारा निकाह रसूल से कर दिया।
0: इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है मुश्ताक। मेरा दिल कहता था मुश्ताक कि मेरा मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ मुश्ताक, आज भी।
1: लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता सारे, तुम्हारा दूसरा निकाह हो चुका है। तुम खुश रहो, अब यही दुआ करूंगा कि मेरा प्यार जहां भी रहे सलामत रहे।
0: मुश्ताक, अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ कि रसूल के साथ सिर्फ मेरा शरीर रह सकता है, तुम्हारी सारे नहीं मुश्ताक।
1: तो क्या तुम रसूल के साथ खुश नहीं हो?
0: मैं कैसे खुश हूँ ये देखना चाहते हो? ये देखो ये निशान उस रसूल के दिए हैं, यही है उसका प्यार। नहीं देख सकते ना, ये तो तन पर पड़े ऐसे जख्म है मुश्ताक।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां का 8वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
3: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पूर्व जज गिरिवाला सिंह और उनके बेटे समर सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। और मौसम विभाग के अनुसार टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन का एक बजा है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।
1: सखियों, स्वागत है आपका महिला सभा कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए स्मृति तिवारी का नमस्कार। सखियों, हम सभी देख रहे हैं दुनिया भर में ईंधन का संकट बढ़ रहा है। इसके लिए सभी देश प्रयास कर रहे हैं। हम सभी अपनी तरफ

से प्रयास करें तो ईंधन की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। सखियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए ईंधन की खपत कम करने के लिए कहा है। हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या कार पूलिंग करें, पेट्रोल डीजल वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। आसपास के कार्यों के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी दूर के लिए इसका उपयोग करने से हम ट्रैफिक जाम से आसानी से बच सकते हैं। सखियों, साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती है। ये एक तरह की एरोबिक एक्सरसाइज है जिसे शरीर को चुस्त रखने के लिए और मसल्स को टोन करने के लिए भी चलाया जाता है। और अगर हम रोजाना 20-30 मिनट साइकिलिंग करें तो शरीर जो है हमारा शेप में रहता है। सखियों, हम कह सकते हैं साइकिल एक साधारण सवारी नहीं बल्कि सेहत और स्फूर्ति का खजाना है और इसके उपयोग से हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। सेहत पर साइकिल चलाने के फायदों को ध्यान में रखकर ही हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के लिए साइकिल के फायदे उजागर करना और सेहत के प्रति साइकिल चलाने के फायदों से लोगों को अवगत कराने जैसे कारणों को ध्यान में रखकर ये दिवस मनाया जाता है। सखियों, ये दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। साइकिल चलाने से वायु प्रदूषण कम होता है और इसे चलाने के लिए पेट्रोल या सीएनजी किसी ईंधन की जरूरत नहीं होती है। सखियों, साइकिलिंग हर उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन गतिविधि है। सखियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट साइकिल चलाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे रक्त संचार अच्छा व शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। साइकिलिंग करने से कैलोरी बर्न होती है, शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। सखियों, पैडल चलाने से शरीर में एंड्रोफिन निकलता है जिससे मानसिक शांति मिलती है। साथ ही ये परिवहन का सबसे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल साधन है। सखियों, आप भी साइकिलिंग करें लेकिन सुबह के समय। इस समय हीट वेव चल रही है इसलिए दोपहर और शाम के समय बिल्कुल भी साइकिल न चलाएं। सखियों, साइकिल के हर पैडल के साथ एक नया सफर शुरू होता है जो हमें सिखाता है जीवन भर स्वस्थ रहना। जीवन के सफर में जब हम सफर साथ हो तो हर लम्हा खुशनुमा हो जाता है, मंजिलें आसान हो जाती हैं और रास्ते यूं ही कट जाते हैं।

0: सखियों, कुछ समय पहले हम आपसे बात कर रहे थे सेहत को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए साइकिलिंग करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तन के साथ मन भी खुश रहे। इसके लिए जरूरी होता है हम अच्छा साहित्य और किताबें पढ़ें। इससे हमारे अंदर नए विचार आते हैं। साथ ही अलग अलग परिस्थिति और घटनाओं को जब हम देखते हैं तो मन में कई तरह के भाव आते हैं। इन भावों में शब्दों का संयोजन करके लय के साथ हम कविता और काव्य पाठ के रूप में व्यक्त करते हैं। सखियों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य पाठ। कवित्री हैं ज्योति दोहरे।
1: सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। एक मुक्तक से सभी श्रोताओं से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। चूंकि मैं कर्म को विशेष महत्व देती हूँ, मैं मानती हूँ कि कर्म की प्रधानता हमारे जीवन में सबसे विशेष होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ सुनिएगा। नशा मेहनत का जो करते सबर से काम लेते हैं, नशा मेहनत का जो करते सबर

करते न किस्मत नाम लेते हैं। मित्रों, हर किसी के आगे हमें झुकना भी नहीं चाहिए, हमें कैसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए, एक मुक्तक के माध्यम से आपको बताती हूँ, सुनिएगा। कि पथिक बन कर चले करने सभी की रहनुमाई को, न बांटे इस धरा को और गगन की उस ऊंचाई को। पथिक बन कर चले करने सभी की रहनुमाई को, न बांटे।

खुदाई को, और चार पंक्तियां और रखती हूँ कि करना हो फतेह हिमालय तो छोटी घाटियां चढ़ने से क्या होगा, कि करना हो फतेह हिमालय तो छोटी घाटियां चढ़ने से क्या होगा, और बनना हो जो सूत्रधार तो एक दो किताबें पढ़ने से क्या होगा, जानना चाहते हो समुद्र की गहराई तो उसकी तह तक जाओ, कि जानना चाहते हो समुद्र की गहराई तो उसकी तह तक जाओ, यूं छोटे तालाबों में मछलियां पकड़ने से क्या होगा, यूं छोटे तालाबों में मछलियां पकड़ने से क्या होगा। बेटियां चांद तक पहुंच गई फिर भी उन्हें आज कम आंका जाता है, और एक बेटी होने के नाते देश की सभी बेटियों को एक छंद अपना घनाक्षरी, मेरा सर्वप्रिय छंद, मैं उसको सभी को भेज रही हूं, सभी का आशीष मिले। सुनिएगा कि

हैं नशे को बंद करने के ऊपर, नशा मुक्ति के ऊपर एक छंद आप सभी को भेज रही हूँ, सप्रेम भेंट कर रही हूँ, सुनिएगा। चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत यहाँ, राष्ट्र को संजोने वाले छंद होने चाहिए। के चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत यहाँ, राष्ट्र को संजोने वाले छंद होने चाहिए। दबे ना गरीबी यहाँ जीवन के बोझ तले,

सुने चाहिए। हमारी कवियों की कलम बहुत कुछ लिखती है, लेकिन जब एक देश प्रेम की कवयित्री कुछ लिखने का प्रयास करती है तो सबसे पहले उसे सीमा पर जो सैनिक हैं उनकी माएँ याद आती हैं, क्योंकि उनकी अगर माँ ना हो तो वो सीमा पर सैनिक हमारे ना खड़े हों और हमारे देश की रखवाली ना कर रहे हों। तो सैनिकों की माओं के ऊपर समर्पित मेरा एक घनाक्षरी आप सभी को भेंट कर रही हूँ, सुनिएगा।

कोख से, ऐसी ही माओ पे हर बार लिखे लेखनी, ऐसी ही माओ पे हर बार लिखे लेखनी। और एक छंद में और आप सभी को भेज रही हूं, सुनिएगा। कि जागी नहीं युवा पीढ़ी सोई रही प्रेम में, कि जागी नहीं युवा पीढ़ी सोई रही प्रेम में,

0: राष्ट्रभक्ति भाव बिना देश का भविष्य यहाँ चुन कौन पाएगा, और कैसे करें सारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण अब, कि कैसे करें सारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण अब, जाने बिना देश यहाँ गुण कौन पाएगा, जाने बिना देश यहाँ गुण कौन पाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपका रस परिवर्तन करती हूँ और आपको एक गजल के एक मतले और एक शेर से जोड़ती हूँ कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, गुलों के जिस्म पर नाखूनों की ये निशान किसके हैं, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, गुलों के जिस्म पर नाखूनों के ये निशान किसके हैं, और मचा है तंग गलियों में अचानक शोरगुल कैसा, कि मचा है तंग गलियों में अचानक शोरगुल कैसा, ये किसके घर पर आए नए मेहमान किसके हैं, ये किसके घर पर आए नए मेहमान किसके हैं। और एक शेर आप सभी के बीच पेश करती हूँ कि सभी लोगों ने अपनी बोलियां आकर लगाई हैं, कि सभी लोगों ने अपनी बोलियां आकर लगाई हैं, हमें मालूम है बिकते यहाँ ईमान किसके हैं। और एक शेर देखिएगा कि अदालत फैसला देने से पहले देख ले थोड़ा, कि अदालत फैसला देने से पहले देख ले थोड़ा, मेरे बारे में झूठे दे रखे बयान किसके हैं। और मक्ता पेश करती हूँ, यहाँ बाजार में ज्योति हर एक सामान बिकता है, दुकानों पर सजा रखे ये अरमान किसके हैं।
1: सखियों, अभी आपने ज्योति दोहरे से काव्य पाठ सुना। सखियों, समर वेकेशंस चल रहे हैं और हम बच्चों को नई नई एक्टिविटी से जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो। हम देखते हैं जब भी बच्चों को अपने मन के अनुसार कुछ करना होता है तो वे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, तो कभी टीवी पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम को लंबे समय तक देखने में अपना समय बिताते हैं। लगातार स्क्रीन से जुड़े रहने से वे ओवर एक्टिव होने लगते हैं, उनका ध्यान भटकने लगता है। सखियों, उनकी परिवर्तनशील भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि उन्हें योग से जोड़ें। बच्चों में योग के प्रति रुचि जागृत करें, उन्हें योग करने के लिए प्रेरित करें। सखियों, बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं, उनके साथ खुद भी योगा करें। एक शांत और सुरक्षित योगा स्पेस बनाएं, घर में एक आरामदायक जगह चुनें, गैजेट्स को वहां से दूर रखें और उनके साथ अभ्यास करें। सखियों, जब वे हमें करते देखेंगे तो वे स्वयं जुड़ना चाहेंगे। खेल खेल में 10-15 मिनट का अभ्यास कराते हुए योगासन को उनकी आदत में शामिल करें, साथ ही योग के प्रति उत्साहित करें। योग के आसनों को जानवरों या प्रकृति के नाम से जोड़कर मज़ेदार बनाएं। ताड़ासन, वृक्षासन, तितली आसन, भुजंगासन, सिंहासन कराएं। सखियों, इन योगासनों को करने से शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, मांसपेशियों और जोड़ों का व्यायाम होता है और इससे उनका संतुलन और एरोबिक क्षमता भी बेहतर होती है। सखियों, जब बच्चे सही आसन में बैठना सीखते हैं ना, तो वे अपने शरीर के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, उनके जीवन में स्वस्थ शारीरिक आदतें शामिल होने लगती हैं। योग में गहरी सांस लेने की प्रक्रिया बच्चों को एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने और उनके मन को शांत करने में मदद करती है। सखियों, योग करते समय बच्चे शरीर पर संतुलन बनाना सीखते हैं, नए आसन सीखते हैं तो उन्हें उपलब्धि का एहसास होता है, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास

विश्वास आता है, अनुशासन में रहना सीखते हैं। उन्हें समझाएं कि योग दिनचर्या का सहज हिस्सा है, उसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और इससे याददाश्त यानी कि मेमोरी भी तेज होती है, पढ़ाई में मन अधिक लगता है और बच्चों की रचनात्मकता भी बढ़ती है। सखियों, हम बच्चों के सुबह के व्यायाम और सोने से पहले की दिनचर्या में सरल योगासन को शामिल कर सकते हैं। बच्चों के साथ समय बिताने से हमारी देखिए बॉन्डिंग है ना, वो और भी मजबूत होगी। वे अपनी बातों को आपसे और अधिक शेयर करेंगे और बच्चे आपके और भी करीब आ जाएंगे।

सखियों, हम सभी देख रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ रही है। हीट वेव को हम सभी महसूस कर रहे हैं और इनसे बचने के लिए हम एनर्जी ड्रिंक, शिकंजी, आम पना, मठा, छाछ, सत्तू का शरबत को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। ये पेट को ठंडा रखते हैं, साथ ही एनर्जी लेवल भी बढ़ाते हैं। साथ ही ठंडी ठंडी लस्सी, मैंगो शेक का हम सब आनंद ले रहे हैं। सखियों, इस समय आम तो हर तरफ देखने को मिल रहा है। आम से बने व्यंजन का स्वाद हमें अलग ही सुख देता है। सखियों, आम रस आम के गूदे से बना स्वादिष्ट और ताजा पेय है, जो अपनी प्राकृतिक मिठास और ठंडक के लिए जाना जाता है। सखियों, इस मौसम में इसके सेवन से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, साथ ही ये पाचन को सुधारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सखियों, आम रस का प्रयोग कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है, साथ ही आइसक्रीम, केक में भी आम रस का उपयोग होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आम रस के बहुत लाभ होते हैं, जो गर्मियों में थकान को मिटाकर शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। सखियों, आम रस विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये विटामिन ए से भरपूर होता है, जो आँखों की रोशनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आम रस पाचन में सहायक होता है और इसमें फाइबर की मात्रा होती है, जो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार है। सखियों, आम रस में कैलोरी और अधिक होती है, जिसका वजन बढ़ा हुआ है या मधुमेह रोगी है, डायबिटिक पेशेंट है, वो इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। सखियों, आप भी घर में आम लाएं, आम रस बनाएं, पूरे परिवार के साथ इसका लुफ्त और आनंद उठाएं, लेकिन गर्मी को ध्यान में रखते हुए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर से जब भी बाहर निकलें अपने शरीर को कवर करके निकलें और साथ ही पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें। और अब समय कह रहा है हमें चलने के लिए, तो कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी सखी स्मृति तिवारी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं लोक भजन के साथ। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुति है आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात। 1936
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: स्वाति पाराशर के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज की ये प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। मोहम्मद रफी का गाया, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का स्वरबद्ध किया फिल्म मौसम का ये गीत है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म मौसम का ये गीत था। डर फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है। शिवहरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा है।

0: लता मंगेशकर और ए हरिहरन का गाया ये डर फिल्म का गीत था। शिव हरि के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा था। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी चिंता जताई है कि अभी भी कई जनजातीय वर्गों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी पहले ही प्राप्त कर ली है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अब सड़क निर्माण को सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखेगा। इसी सोच के साथ मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 1 और 2 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के अध्ययन दौरे पर गया। वहां टीम ने महाराष्ट्र के वित्तीय मॉडल, डिजिटल गवर्नेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को समझा। अब इसी तर्ज पर प्रदेश में 1 रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाएगा ताकि निर्माण स्थल पर कोई घटना होने पर मिनटों में कार्रवाई हो सके। खंडवा जिले ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में देश भर में 5वां और अपने जोन में 2रा स्थान हासिल किया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें सोकपिट, रिचार्ज पिट, बोरी बंधान और कंटूर ट्रेंच जैसी संरचनाएं शामिल हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा समेत कई जिलों में इस दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विकास खंडों में पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम मध्य रेलवे भी 15 मई से 15 जून तक जबलपुर मंडल में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहा है। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। ये महोत्सव संग्रहालय की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के जनजातीय नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 6 जून की शाम 6:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। और अब बात मौसम की। इस बार नौतपा में गर्मी की जगह आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने डेरा जमाए रखा। बारिश और तेज हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया और कहीं भी हीट वेव नहीं बनी। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच कलेक्टर ने अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बारिश के पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद द्वारा 3,27,00,000 रुपए की लागत से नगर में आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। शिवपुरी में प्रतिबंधित और नियंत्रित श्रेणी की भूमियों के अवैध हस्तांतरण, पंजीयन, नामांकन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिले के सभी उपपंजीयकों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
4: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
5: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
6: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में पहला गीत प्यार का मौसम फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरू के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। सुनना पसंद किया है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम ने। गोला बाजार भक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, रामजी आर्य ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनना पसंद किया है बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वाकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा रानी और हिना कौसर ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राजी राशि, रक्षित चित्रंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती, रेखा ऋतिक, ऋचा स्वीटी, सागर रिया, रीत ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सदस्य, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। सुनना चाहा है अभिजीत और साथियों का गाया ये दिल लगी फिल्म का गीत। समीर ने गीत लिखा है, स्वरबद्ध किया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

अगले गीत के लिए अनुरोध लिख भेजा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने। मगरलोड धमतरी से पुनूराम साहू राज, तेजेश्वरी साहू, राजश्री राज साहू ने। इचलकरंजी महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, मितांशु हजारे और आदित्य हजारे ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, नुपुर, मोनिका, ऋषिका और रॉबिन ने। ये दिल आशिकाना फिल्म का टाइटल ट्रैक है। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर ने लिखा है गीत।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं स्टोर रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला।

पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा कालका से, शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की पसंद है। और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। सुनना पसंद किया है, स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये टाइटल, स्वीकार किया मैंने फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। निदा फाजले ने लिखा, उषा खन्ना की धुन।

कार्यक्रम में अगला गीत गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने सुनना पसंद किया है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश

मिस्त्री ने पसंद किया है। ग्राम महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की पसंद है शक्ति फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म शक्ति के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी, 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। CBSE ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था और 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अज़रबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांधिकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा शाम 6 बजे। रात्रि 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। चर्चा का विषय है कार्यक्रम रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे नाटक सुनेगा अशोक वन का पेड़, लेखक जगदीश अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता भी जगदीश अधिकारी होंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनिएगा रमेश प्रेम का विचित्र वीणा पर बजाया राग बिहाग। शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। ये थी जानकारी आकाशवाणी के सांधिकालीन सभा के प्रसारण की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय 3:22 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे मीडियम वेव पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी है।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ भजन। लोक संगीत के कार्यक्रम में महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ लोकगीत, आरंभ में ये लोक भजन है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महावीर सिंह भिदौरिया के गाए कुछ लोकगीत। ये आकाशवाणी भोपाल है डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। महावीर सिंह भदौरिया के गाए लोकगीत के बाद अब सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए स्वाति पाराशर के गाए कुछ भजन।

स्वाति पाराशर के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। प्रेम रोग फिल्म का यह गीत है, सुरेश वाडकर ने गाया है, संतोष आनंद ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।

सत्ते पे सत्ता फिल्म का यह गीत है, आशा भोसले किशोर कुमार ने इसे गाए हैं। आरडी बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और बासु और साथियों की आवाज़ें हैं। गुलशन बावरा गीतकार हैं और संगीतकार आरडी बर्मन।

0: सत्ते पे सत्ता फिल्म के इस गीत के साथ ही चितपट संगीत समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रदेश में राज्यसभा के 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी, 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। सीबीएसई ने बताया कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था और 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अज़रबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशां, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक सिसकिया का 8वां भाग।
5: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकिया। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता पैसों की लालच में आकर सारे का दूसरा निकाह रसूल से करवाना चाहती है, जो औरत को पांव

0: सुना है तूने।
1: मुझसे पूछे बगैर तू मेरा निकाह तय कैसे कर सकती है अम्मी?
0: मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और मैं जो भी कर रही हूँ वो तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ।
1: अब इसमें मेरी क्या भलाई है? तू एक भलाई तो पहले ही कर चुकी।
0: बस कर, आज तक उस मुश्ताक को भूली नहीं है। कान खोल कर सुन ले, तेरा निकाह अब उसी जगह होगा जहां मैं चाहूंगी।
1: मैं ये निकाह नहीं करूंगी।
0: तेरा निकाह रसूल से ही होगा, और अपने मन की कोई बात हो भी तो उसे वहीं दफन कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी।
1: मेरा निकाह मुझसे पूछे बगैर तू कैसे कर सकती है अम्मी? मैं ये निकाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
0: अरे तुझसे पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, और मैं तेरी माँ हूँ, जहाँ कहूंगी वहीं तेरा निकाह होगा।
1: लेकिन मैं उस रसूल से निकाह नहीं कर सकती।
0: क्यों, क्या कमी है उसमें?
1: तू खूब जानती है अम्मी, उस रसूल में क्या कमी है। गांव का बच्चा बच्चा जानता है नूरी के साथ क्या किया उसने। ये बात क्या छिपी है किसी से?
0: अरे जा, नूरी बदजात थी, रसूल से उल्टा जुबान लड़ाती थी। रसूल ने जो किया सही किया। औरत को अपने शौहर की बात पर ही चलना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे वही सजा मिलती है, और उसका हश्र नूरी जैसा होता है। पर रसूल तुझे खुश रखेगा बेटी, उसके पास पैसा भी खूब है, मेहनत करता है, कमाता है। तुम दोनों बहुत बहुत खुश रहोगे।
1: नहीं अम्मी, पैसा कमाने से कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अम्मी, पूरे गांव में एक भी आदमी ना होगा जो रसूल के बारे में अच्छा सोचता हो, और तुम मेरा निकाह उसी के साथ पढ़वाना चाहती है?
0: अरे लोगों का क्या, लोग उसके पैसों से जलते हैं, उसकी तकदीर से जलते हैं।
1: तू अपने आप को धोखा दे रही है अम्मी, लेकिन मैं कह देती हूँ, मैं उस रसूल से कभी निकाह नहीं करूंगी।
0: बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे रसूल से निकाह करना होगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
1: मैं इस फैसले को नहीं मानती।
0: तो उस मुश्ताक की बांदी बनकर रहती, उस घर में नौकरानी बनकर रहती।
1: अम्मी,
0: भूल जा उस मुश्ताक को, अब तेरा निकाह रसूल से होगा।

सारे के लाख मना करने के बावजूद फाता उसका निकाह रसूल के साथ कर देती है। निकाह के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों में अनबन शुरू हो जाती है।

0: खाना बन गया क्या? बड़ी भूख लगी है। साराय, साराय, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे अरे, क्या सोच रही है? खाना दे।
1: हाँ, लाती हूँ।
0: और ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है तूने?
1: वो कुछ नहीं, बस।
0: कुछ नहीं? अरे तो क्या तू हंस नहीं सकती? रोनी सूरत बनाकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है।
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खाना खाओ।
0: अरे रोनी सूरत लेकर खड़ी है और मैं खाना खाऊं?
1: खाना क्यों फेंक दिया?
0: चुप कर, रहती है मेरे साथ और रोती है उस मुश्ताक को याद करके। अब अगर मेरे सामने आई तो अच्छा ना होगा। अब जा यहां से, ऐसे क्या देख रही है मुझे, चल।

0: अब्बू अब्बू खाना खा लो, काम पर भी तो जाना है।
1: ला दो बेटा।
0: अब्बू मायूस लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है?
1: ठीक ही हूँ बेटा, तबीयत का क्या होता है, तकदीर में जो लिखा है वही तो देखूंगा।
0: ऐसा क्यों सोचते हो अब्बू? दिल छोटा ना करो, जब तकदीर में ऐसा ही लिखा था तो इसके अलावा और क्या होगा? बस भुगतना तो है ही।
1: रसूल कब आ रहा है?
0: पता नहीं अब्बू, कहा तो था कि एक महीने में आ जाएगा।
2: सारे सारे
0: अब्बू लगता है रसूल आ गया।
1: जा उसे देख बेटा, किसी चीज की जरूरत हो उसे।
0: हाँ तुम जाओ अब्बू, मैं देखती हूँ।
2: साराय साराय
3: आती हूँ।
2: साराय साराय
3: कहा ना आती हूँ, फिर शोर क्यों मचा रहे हो?
2: क्या कर रही थी?
3: अब्बू को खाना खिला रही थी।
2: जब मैं आया तो पहले मेरे पास आना चाहिए था, तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं है।
3: चाय लाऊं?
2: रहने दे, मेरे आते ही तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बच जाते हैं? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वास्ता पड़ा था तुझसे। अरे अब कहाँ जा रही है?
3: रसोई में।
2: चुपचाप यहीं खड़ी रह, समझी?
3: तुम हमेशा मुझसे इसी तरह क्यों बोलते हो?
2: तो चूमो तुझे? अरे सूरत तो ऐसे बनाए रहती है जैसे मैं मर गया हूं। अरे जा जा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, जा उसी के पास जा जिसने तुझे थूक दिया है।
3: रसूल, अपने दिमाग की गंदगी अपने पास रखा करो।
2: अभी बताता हूं तुझे।
3: रसूल

0: बू चाय।
1: रहने दो बेटी, मन नहीं है।
0: अरे चाय पी लो।
1: अरे कहा ना रहने दो।
0: क्या हुआ, चाय क्यों नहीं पी रहे?
1: मन नहीं है।
0: अब मन नहीं है या और कोई बात है?
1: कोई बात हो भी तो तुम्हें क्या, तुम अपना काम तो कर ही रही हो।
0: तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
1: मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो, पर तुम जानना नहीं चाहती।
0: अरे तुम बेकार की बातें सोच कर अपना मन खराब कर रहे हो। मेरी मानो तो जैसा चल रहा है चलने दो।
1: अरे सारे को देखो।
0: क्या हुआ है सारे को, अच्छी भली तो है।
1: तुम माँ हो उसकी या?
0: चुप करो, कभी तो मुबारक शब्द बोलो।
1: सारे के साथ रसूल कैसा बर्ताव करता है जानती हो?
0: अरे रसूल ठीक है, सारे ही उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती तो ऐसा होगा ही।
1: फादा, तूने पैसों के लालच में आकर ऐसा किया है, और अब रसूल के चंद पैसों ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जो तुम अपनी बेटी के दुख को नहीं देख पा रही हो। तुमने मां होकर सारे को एक जानवर के हाथ

0: अब्बू
1: कौन सारे?
0: हाँ
1: आ गई बेटी,
0: खाना खा लो अब्बू।
1: रख दे बेटा।
0: अब्बू एक बात पूछूं?
1: हाँ
0: सच सच बताएंगे?
1: पूछो बेटी, क्या बात है?
0: अब्बू सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा दूसरा निकाह क्यों किया?
1: ये सवाल मुझसे ना पूछा कर बेटी।
0: क्यों ना पूछूं अब्बू?
1: मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा।
0: मैं एक लड़की हूं, इसीलिए ना आप पर बोझ बन गई थी। ऐसा ही था ना अब्बू?
1: नहीं,
0: लड़की सिर्फ जुल्म सहने के लिए होती है क्या? क्या लड़की की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? वो अपनी खुशियों को अपने तरीके से नहीं पा सकती, वो खुलकर हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों घोटती रहती है, बस पिसती रहती है, महज देह बनकर। आपने सब जानते हुए भी आप चुप रहे, मेरी बर्बादी देखते रहे आप। क्यों अब्बू, क्यों क्यों होने दिया आपने मेरा दूसरा निकाह उस रसूल के साथ? क्यों अब्बू, क्यों?
1: बेटा मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस इतना जान ले कि तू अपनी अम्मी की नाजायज इच्छाओं की बलि वेदी पर चढ़ी है। वो चाहती है कि उसका जमाई उसे खूब पैसा दे। रसूल तेरी माँ को पैसा देता है और यही वजह है कि वो तुम पर होने वाले जुल्मों को अनदेखा करती है। पैसे के लालच ने उसे माँ से शैतान बना दिया है बेटी।
0: शैतान कुछ क्यों नहीं किया अब्बू?
1: मैं मजबूर हूँ बेटी। तू जा, घर जा बेटी।
0: अब्बू आप रो रहे हैं। अब्बू
1: नहीं बेटी, रो नहीं रहा हूँ, अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ।
0: अब्बू
1: तू जा बेटे, तुझे देर हो रही है। ये तूने क्या किया इस फूल सी बच्ची पर?

0: कुछ समय बाद मुश्ताक के बीमार होने की खबर सुनकर हसन भट्ट उससे मिलने जाता है।
1: अरे फजी, जरा देखना तो कौन है।
2: देखती हूँ। अरे हसन भाईजान, आप? सलाम।
3: वालेकुम सलाम।
2: आइए अंदर आइए।
3: क्या करीम भाईजान घर पे नहीं है?
1: अरे अरे हसन भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। आइए।
3: वालेकुम सलाम।
1: आइए आइए, बैठे बैठे। हाँ भाई। अरे भाई फजी, जरा दो कप चाय तो बनाओ।
2: जी।
3: सब ठीक तो है ना?
1: बस सब ठीक है। कैसे हो सन भट्ट? फातह कैसी है और सारे?
3: सब ठीक है।
1: आपके चेहरे पर मायूसी दिख रही है।
3: पहले ये बताइए, मुश्ताक कैसा है? सुना है उसकी तबीयत खराब है, सो मिलने आ गया।
1: हो, बस क्या बताऊं, दवा असर ही नहीं कर रही है। दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है।
3: किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते?
1: हाँ बस वो इंतजाम में लगा हूँ, कुछ पैसे हाथ आ जाएं तो दिखाऊंगा। मुश्ताक के बीमार हो जाने से भाई घर की माली हालत गड़बड़ा गई है।
3: करीम भाई, आप पैसों की चिंता ना करें, हम मदद करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ।
1: आप?
3: उनका बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मुश्ताक जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
1: अरे नहीं नहीं हसन भट्ट, आप तकलीफ ना करें।
3: तकलीफ कैसी, मुश्ताक के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है, मुझे ना रोके।
1: अब जैसा आप बेहतर समझें।

0: अरे करीम भाई, ये है डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: आइए डॉक्टर साहब, मुश्ताक उस कमरे में।
2: जी अच्छा,
0: आइए।

0: मैंने मुश्ताक को देख लिया है
1: जी।
0: मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो मुश्ताक एक सप्ताह में दौड़ने लगेंगे।
1: आमीन। डॉक्टर साहब, आपकी फीस
0: आप फिक्र ना करें, असाइनमेंट ने फीस पहले ही दे दी है। आप दवा मंगवा कर समय से दवा दें। अच्छा, मैं चलता हूँ, जरूरत लगे तो मुझे बुलवा भी लीजिए।
1: जी
2: अच्छा डॉक्टर,
1: जैसा आप बेहतर समझे।
2: ये दवा ले, समय पर दवा देते रहिएगा, मुश्ताक जल्द ठीक हो जाएगा।
1: हसन भट्ट, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, मेरे समझ में नहीं आता।

0: अरे ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा करीम भाई, अब मैं चलूंगा।
1: खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
2: कौन?
3: मैं मुश्ताक।
2: मुश्ताक, मुश्ताक आप?
3: सारे तुम? अब्बू कहाँ हैं?
2: अब्बू बाहर गए हैं, आते ही होंगे। आओ बैठो।
3: कुछ बोलो सारे, नई जिंदगी कैसी चल रही है?
2: बेहतर है।
3: सारे एक बात पूछूं, सच बताओगी?
2: पूछो।
3: तुम मुझसे तलाक लेकर खुश हो? अगर ऐसा है तो मुझे किसी से कोई शिकायत ना होगी।
2: तुमने मुझसे दगा किया है मुश्ताक, प्यार का ढोंग रचते रहे हो, इंतजार भी ना कर सके और तलाकनामा भेज दिया।
3: सारे मेरे प्यार पर तोहमत ना लगाओ, तुमने तलाकनामा भेजा और मैंने तो सिर्फ तुम्हारी रजा मानकर उस पर दस्तखत किए हैं।
2: क्यों झूठ बोलते हो मुश्ताक? अपने गुनाह को मेरे सर क्यों मर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करती भला? मैं तुमसे तहे दिल से मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूँ।
3: सारे, अगर तुमने तलाकनामा नहीं भेजा तो फिर हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ सारे, कोई है जिसने हमारे बीच ये दूरियां पैदा की है।
2: पर ऐसा कौन हो सकता है?
3: अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर तुम्हारी अम्मी ही ऐसा कर सकती है।
2: क्या?
3: हाँ, जैसा लोगों ने मुझे बताया है कि रसूल के पैसों की वजह से तुम्हारी अम्मी ने पहले हमें तलाक दिलवाया और फिर तुम्हारा निकाह रसूल से कर दिया।
2: इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है मुश्ताक।
3: हाँ।
2: मेरा दिल कहता था मुश्ताक कि मेरा मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ मुश्ताक, आज भी।
3: अरे मैं भी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता सारे। तुम्हारा दूसरा निकाह हो चुका है, तुम खुश रहो। अब यही दुआ करूंगा कि मेरा प्यार जहां भी रहे सलामत रहे।
2: मुश्ताक, अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ कि रसूल के साथ सिर्फ मेरा शरीर रह सकता है, तुम्हारी सारे नहीं मुश्ताक।
3: तो क्या तुम रसूल के साथ खुश नहीं हो?
2: मैं कैसे खुश हूँ ये देखना चाहते हो? ये देखो ये निशान उस रसूल के दिए हैं, यही है उसका प्यार।
3: सारे,
2: नहीं देख सकते ना? ये तो तन पर पड़े ऐसे जख्म है मुश्ताक, जो वक्त गुजरते मिट जाएंगे, पर मन पर जो जख्म लगे हैं, वो तो मेरे तन के साथ ही मिटेंगे मुश्ताक।
3: नहीं सारे, अब ऐसा नहीं होगा।
2: मुश्ताक, तुम अब कुछ नहीं कर सकते।
3: नहीं सारे, अगर तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो और मेरा साथ दो तो हम आज भी एक हो सकते हैं।
2: क्या ये हो सकता है मुश्ताक? क्या हम फिर से एक हो सकते हैं?
3: हाँ सारे।

0: सारे तुम्हारे तन पर पड़ा हर जख्म मेरी रूह पर लगा है, और अब जब तक मैं तुम्हें रसूल से अलग न कर दूं, तब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा।
1: मुश्ताक,
2: संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सिसकियां धारावाहिक का 8वां भाग सुना। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 102.3 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं मीडियम वेव पर। अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 5 जून से सी फूड निर्यात पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक काल अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। राज्यपाल आज हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव पुरखों को प्रणाम पोस्टर प्रदर्शनी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्यवाही पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देशभर के आदिवासी नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और वंश देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान ग्वालियर केंद्र का है।

नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं साथियों कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। कार्यक्रम युववाणी में साथियों एक बार फिर आपकी दोस्त उमा आप सभी का स्वागत करती है। साथियों, गर्मियों का आगाज़ हो चुका है। मई जून की इस भयंकर गर्मी में लोग अक्सर धूप और तेज़ गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं। खासकर इस मौसम में जब लोग ठंडा पानी पीना बेहद पसंद करते हैं। चिलचिलाती धूप से आते ही फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने की आदत हम में से कई लोगों की होती है। इसे पीने से हमें तुरंत राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन ठंडे पानी पीने से मिलने वाली यह राहत कुछ पल की होती है। साथियों, आपको कुछ देर राहत देने वाला यह पानी आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। बहुत कम लोग यह ही जानते होंगे कि बर्फ़ वाला या चिल्ड वाटर पानी पीने से सेहत को कई गंभीर नुकसान पहुँच सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्रिज में पानी आर्टिफिशियल तरीके से ठंडा होता है, जिससे शरीर के टेम्परेचर में अचानक बदलाव आता है। इससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ सकती हैं। इससे न सिर्फ आपका वजन बढ़ सकता है, बल्कि आपके हार्ट को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही ठंडा पानी आपके पाचन तंत्र को तेजी से प्रभावित करता है। नियमित रूप से ठंडा पानी पीने से खाना पचाना मुश्किल हो जाता है और साथ ही पेट दर्द, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ड वाटर पीते हैं तो इससे ब्रेन फ्रिज की समस्या भी हो सकती है। दरअसल साथियों, ठंडा पानी रीढ़ की हड्डी की सेंसिटिव नसों को ठंडा करता है, जिससे दिमाग पर असर पड़ता है। इसकी वजह से सिर दर्द और साइनस की समस्या हो सकती है। साथ हमारे शरीर में वेगस नर्व होती हैं, जो गर्दन के जरिए हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो इसकी वजह से आपकी ये नसें तेज़ी से ठंडी होने लगती हैं और हार्ट रेट को और पल्स रेट को धीमा कर देती हैं, जिससे इमरजेंसी स्थिति पैदा हो सकती है। चिल्ड वाटर से गले में खराश और कंजेशन की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से खासकर खाना खाने के बाद एक्स्ट्रा बलगम बनता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाता है और सूजन संबंधी संक्रमण का कारण बनता है। इसलिए साथियों, चिल्ड पानी ना पिए। मिट्टी के बर्तन का पानी आयुर्वेद के अनुसार हमारी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए फ्रिज के पानी की अपेक्षा मिट्टी के बर्तनों के पानी का उपयोग करें। इससे आप अपनी हेल्थ के साथ साथ बिजली की खपत को भी कम कर सकते हैं। साथियों, बिजली की खपत को कैसे कम किया जा सकता है जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि हर महीने आने वाले भारी भरकम बिजली के बिल को कम कैसे कर सकते हैं। साथियों, अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो बिजली की खपत को बड़ी आसानी से कम कर पाएंगे और जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव करना होगा। इसके लिए आप नेचुरल लाइट का यूज़ करें, अपने घर की खिड़की और दरवाज़ों के पर्दे खोलें और सूरज की रोशनी को अंदर आने दें। जब भी हो सके आर्टिफिशियल लाइट पर निर्भर होने के बजाय यदि आप नेचुरल लाइट का उपयोग करेंगे तो आप बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। हल्के रंग के पर्दे खरीदें, उनसे कमरों में उजाला हो सकेगा और प्राइवेसी भी बनी रहेगी। साधारण बल्ब की जगह CFL और LED बल्ब का प्रयोग करने से काफ़ी ऊर्जा बचाई जा सकती है। साधारण बल्ब अपनी 98% कंज्यूम की गई ऊर्जा को गर्मी के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं, जबकि CFL और LED बल्ब कई ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं और कई गुना ज़्यादा समय तक चलते हैं। ज़रूरत ना होने पर स्विच ऑफ कर दें और यह बिजली बचाने का सबसे आसान और सबसे आम तरीका है और यह वास्तव में काम करता है। इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि एक निश्चित समय पर आपके घर में कितनी बत्तियां हैं। इस बात के प्रति जागरूक रहें कि आपको एक समय पर कितनी बत्तियों की आवश्यकता है। जब आप एक कमरे से बाहर जाएं तब हर बार बत्ती बुझाने की आदत बनाएं। किसी भी ऐसी डिवाइस को अनप्लग करें जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिन डिवाइस के प्लग सॉकेट में

लगे होते हैं वे बंद होने के बावजूद भी बिजली का उपयोग करते रहते हैं। फ्रिज का दरवाज़ा बार बार ना खोलें। दरवाज़ा बार बार खोलने से फ्रिज के कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ती है। एसी के टेम्परेचर को 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियत करें। इससे नीचे टेम्परेचर पर बिजली की खपत पर असर तेज़ी से पड़ता है। कूलर पंखे में इलेक्ट्रिक रेगुलेटर का इस्तेमाल करें और साथ ही ऑयलिंग, कंडेंसर, वायरिंग की सर्विसेज का ध्यान रखें। इस तरह साथियों, अपनी छोटी छोटी आदतों से आप बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे।

साथियों, नौ तपा में तापमान 45 डिग्री से 47 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। इसका असर हमारे साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी पड़ता है, वो भी ओवरहीट हो सकते हैं। इस दौरान मोबाइल, लैपटॉप, ईयरबड्स या पावर बैंक जल्दी गर्म होते हैं। इससे बैटरी डैमेज, लो परफॉर्मेंस या अचानक डिवाइस बंद होने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। साथियों, कभी आपने सोचा है कि आखिरकार फ़ोन में हीट बनती कैसे है? दरअसल साथियों, आपने एनर्जी का एक प्रिंसिपल पढ़ा या सुना होगा, E=mc². इसका मतलब होता है कि ऊर्जा ना बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, सिर्फ बदलती रहती है। हमारा फ़ोन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब फ़ोन यूज़ होता है तो बैटरी में स्टोर एनर्जी हीट में बदलती रहती है और ये ज़्यादा से कम की ओर ट्रेवल करती है। नौतपा में साथियों, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे में फ़ोन गर्म होने पर यह हीट वातावरण में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, इसलिए फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है और ओवरहीटिंग से गैजेट्स को कई नुकसान होते हैं, जैसे बैटरी जल्दी ख़राब होती है, प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है, प्रोसेसर या मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है, फ़ोन या मोबाइल लैपटॉप बंद हो सकते हैं, बैटरी फूलने या और डिवाइस डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है, अचानक शटडाउन से डेटा लॉस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं साथियों, ओवरहीट से स्क्रीन पर भी असर पड़ता है, इसलिए साथियों गर्मियों में गैजेट्स को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं, जैसे फ़ोन को डायरेक्ट धूप के संपर्क में ना आने दें, बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज ना होने दें और फ़ोन ओवरनाइट चार्जिंग पर तो बिल्कुल भी ना लगाएं, हमेशा ओरिजिनल चार्जर का ही यूज़ करें। फ़ोन हीट होने पर उसका कवर हटा दें, लैपटॉप को बेड तकिए पर रखकर तो बिल्कुल ना चलाएं, अनयूज्ड ऐप्स को बंद कर दें और साथियों सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। साथियों गर्मियों में गैजेट्स को ओवरहीटिंग से बचाकर आप उनकी सेल्फ लाइफ को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं।

आशा करती हूँ साथियों कि आपको हमारा आज का यह युववाणी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य विषयों के साथ। तब तक सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आप युववाणी कार्यक्रम साथियों मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथियों अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अब अपनी दोस्त उमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे ग्वालियर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
7: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
8: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
9: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
7: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
8: आकाशवाणी है ना,
10: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
8: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
7: शाम सुहानी हो,
8: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
7: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
8: सफर में
7: आपके साथ
8: आकाशवाणी।

0: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
1: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
2: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है आकाशवाणी मध्य प्रदेश में। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पलक मुछाल और साथियों की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गीत सुनते हैं। फिल्म है प्रेम रतन धन।

श्रोताओ, अगला गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में है। आनंद बख्शी का लिखा हुआ है, राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया, फिल्म है मिस्टर नटवरलाल।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए धूमधाम फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और जोनीता गांधी ने किस गीत को गाया है। सिद्धांत कौशल के लिखे गीत को संगीत दिया है क्लिंटन सेरेजो और बेंका गोम्स ने।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने और स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी तैयारियों की समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण से होगी। और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
3: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
3: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
3: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
3: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
3: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
3: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओ, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
3: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
2: जी,
3: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
2: जी।
3: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है, और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
2: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
3: जी।
2: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
3: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं
2: जी।
3: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
2: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
3: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
2: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
3: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
2: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
3: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
3: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
2: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
4: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
5: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
6: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
5: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर। ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
5: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
6: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
5: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
4: अचानक
6: ये तो रीछ की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
5: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
6: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
5: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
4: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
5: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
4: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
6: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
4: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
6: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
4: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
6: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
4: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
6: बच गए, लगता है रीच चला गया।
4: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
5: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
4: और अपने साथी से जाकर पूछा,
5: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
4: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
6: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
4: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हाँ?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
9: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
8: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
10: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
8: आप तो काम करती है ना?
10: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
8: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
11: नहीं करने देंगे।
12: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा,
13: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
13: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरमा,
13: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
13: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
13: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
14: बिल्कुल,
13: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
6: हाँ, सब तैयार हैं।
14: नहीं कटने देंगे।
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
15: ये है जंगल के उपकार,
16: मिट्टी पानी और बयान,
15: मिट्टी पानी और बयान,
16: जिंदा रहने के आधार।
4: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
13: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म चाहिए तुझे?
12: आगे बढ़ो।
14: अरे कहाँ से?
12: मैं इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए।
13: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
17: नहीं लगाने देंगे
13: बहनों। आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
12: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो
3: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
4: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
12: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो।
3: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
4: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
3: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
4: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
13: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
3: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। अभी आपने NCERT का ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पद्मावत फिल्म का गीत सुनते हैं श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाज़ों में। ए एम तुर्ज के लिखे गीत को संगीत दिया है संजय लीला भंसाली ने।

अब सुनिए नादानियाँ फिल्म का गीत सचिन टंडन, आशीष कौर और सचिन जिगर की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं सचिन जिगर।

अगला गीत विवाह फिल्म से है, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

सूरज जगन की आवाज़ में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिसेस फिल्म का गीत। नीरज पांडे ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं सागर देसाई।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए पराया धन फिल्म का गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन

0: बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम विवरण का समय है, तो आइए पहले आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रम।

आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम 9:30 पर दिल्ली से रिले किया जाएगा। 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नाटक अशोक वन का पेड़। इस नाटक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं जगदीश अधिकारी। रागरजनी कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिए रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन, राग होगा बिहाग।

आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण है क्रम लोक रंग। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनेंगे राजीव शर्मा के गाए कुछ गीत और भजन। रणधीर पहलवान, सआदत हसन मंटो का लिखा ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे 9:30 पर। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता होंगे राकेश ढोंडियाल। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 10:00। 10:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश का समय है 12:00। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनेंगे सिसकियां धारावाहिक की 9वीं कड़ी। जबलपुर केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनिए दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां जबलपुर केंद्र की होंगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम कल रात्रि 10:00 दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कल शाम 7:21 पर भोपाल से आप सुनेंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के चौड़ीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में 5 से 12 जून तक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की और राज्यपाल वंगोभाई पटेल ने भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वी शताब्दी महोत्सव के तहत पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दोनों देशों के विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण ATF की कीमतें मार्च में 60 रुपए से बढ़कर मई में 182 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। ये सहायता अगले 36 महीनों तक जारी रहेगी। इससे विमानन क्षेत्र के 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी ने बताया,
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने 2 लाख ट्रक और 16,000 बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना को भी हरी झंडी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। 233 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी, यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ये मार्ग इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों के साथ साथ कई औद्योगिक और जनजातीय केंद्रों को भी बेहतर संपर्क देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की

0: नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री ने इसे वोकल टू लोकल की दिशा में देश की वैश्विक छलांग बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और 40 से अधिक लोगों को बचाकर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण से होगी। इसके बाद 8 जून से स्वच्छता अभियान, 12 जून से 18 जून तक जन कल्याण शिविर और 19 से 20 जून को प्राकृतिक खेती पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये पूरा अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को संपन्न होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने, स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आज कहा कि इस दौर में हिंदी पत्रकारिता को वीडियो, पॉडकास्ट और मोबाइल मंचों के जरिए युवा पीढ़ी से जोड़ना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सचिव ने अंतिम मतदाता सूची समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर शिवपुरी जिले की मैहर शक्ति और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ज्योति जाटव ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर ज्योति ने स्वरोजगार की राह पकड़ी और आज वे आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
2: हमारे गांव में समूह चलाती हूँ, मेरे समूह हैं 11 समूह हैं, उनकी बैठक करती हूँ और उन मतलब जो भी बैंक सखी का काम करती हूँ और बुककीपर का भी करती हूँ, तो उसमें मुझे 5000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। और घर पे मेरी साड़ियों की दुकान भी है, तो साड़ियों की दुकान भी चलाती हूँ संजय सवेरे के टाइम में। तो आज मेरी इनकम 1,44,000 से अधिक है। मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद बोलना।
0: भोपाल की रविन्द्र भवन में कल शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर पत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादें बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देश भर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस के तहत सुपोषण दिवस और टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। देवास में आज यूसीसी के संबंध में सुझाव और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। अनूपपुर जिले की छात्रा कुमारी आंचलपुरी ने GEE एडवांस्ड 2026 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए ST PWD श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। छिंदवाड़ा में अवैध खनन के मामले में उमरानाला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें पैदल न्यायालय पेश किया है। शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कटनी में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। खरगोन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जिले में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। नशे को कहें ना अभियान के अंतर्गत शाजापुर में आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कल 4 जून को होगी। शहडोल जिले में श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नागरिकों से श्रम प्रहरी बनकर श्रम विभाग को सहयोग देने की अपील की गई है।

नीमच के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले दो वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहन का विवेक भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम जय राम जी की पहुँच जावे। देखो भैया, रो गर्मी का मौसम है और ई मौसम में अपन का चाहना है कि अपने खान पान को अपन पूरा ध्यान रख पाए, और काहे के दोपहर की भी रिया अगर अपन घर से निकले और बिना खाए पिए गए भैया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो भैया जहाँ तक हो सके दोपहर में अपन घर से ना निकलवें और बढ़िया अपन कम खाएं और गम खाएं। कम खाएं से माने कि जो भैया अपन का भूख लगत है, अगर अपन ने उसे एक रोटी कम खाई तो अपन स्वस्थ ही रहें। ज़्यादा तेल मिर्चा ई को भैया बनो खाना अपन को नहीं खाने हैं। और गम खाएं माने सहनशीलता रखने हैं, धैर्य रखने हैं, ताकि जब भी कोनो बात समस्या होते है तो उस समस्या को निपटारो भैया धैर्य से होते, सहनशीलता से होते तत्काल। तो भैया उस समस्या में अगर अपन ने कछु निर्णय लो तो उसे वह परेशानी ही बढ़त है, तो ऐसा अपन का नहीं होने देने हैं। और आज भैया विश्व साइकिल दिवस भी है, सो अपन को ध्यान रखना है कि विश्व साइकिल दिवस में साइकिल की देखो कितनी महत्ता है भैया। एक तो साइकिल से देखो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पर्यावरण को भैया प्रदूषण कम होते है, और संगे संगे अपनी आर्थिक बचत भी होते है कि कहीं जाने हैं कछु काम है भैया, अगर अपन साइकिल से चले गए तो निश्चित मान लो कि भैया अपने पैसे रुपया ही बचने हैं। तो आज जो संदेश है भैया अपन के लाने के साइकिल जोन है वह कितनी तरीक़ा से अपन का फ़ायदेमंद है, सो भैया ये बात का अपन दिमाग में रखें और जीवन को बढ़िया आनंद ले। और भैया ऐसी एक बात है अटल पेंशन योजना की, भैया जय योजना ये के लाने हैं कि जो भी अपने भैया रहे हैं उन्हें एक बड़े कम प्रीमियम के तहत जय योजना लेवी पर कम से कम 1,000 रुपया से लेकर 5,000 रुपया तक को इनमें पेंशन मिलत है। और जब पेंशन भैया जब अपन खा मिलत है और अगर उबेरा जी के नाम जब पेंशन हती अगर वह कछु हो जाते, वैसे तो ना हो लेकिन कछु दुख तकलीफ या माने अगर मृत्यु हो जाते तो फिर उनके पति या पत्नी का भैया ई पेंशन को पूरा पूरा लाभ मिलत है। तो अपन का चाहने के भैया अपनो भविष्य सुरक्षित रहे, अपन सुरक्षित रहे, उनके लाने अपन खा जो जो सरकार की योजना है भैया उनको पूरा पूरा लाभ अपन खा जरूर लेने हैं। और संगे संगे भैया एक बात को ध्यान और रखना है कि जहाँ तक हो सके भैया अपन का बचत जरूर करने है, बचत चाहे डीजल की हो चाहे पेट्रोल की हो और चाहे भैया पैसा रुपयन की हो, कोनो भी बचत होते भैया वह बचत अपनी बढ़त ही होते, तो अपन का बचत करने हैं। और उनके संगे ध्यान रखने कि अपनो जो पैसा रुपया है भैया वो भी अपनो बैंक में रहे, ताकि बैंक में रहने से भैया दो फायदा है, एक तो पैसा रुपया सुरक्षित है और संगे संगे भैया अपन का ऊपर ब्याज ही मिलता है। सो कहते नहीं है कि आम के आम और गुल्लियन के दाम है, सो अपन का भैया ये बात को पूरा पूरा ध्यान रखने के बचत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचत ही बढ़त है। और एक बात को और भैया कि जो अपने पेड़ पौधा है भैया जो वृक्षा है हरी वृक्षा है जो तो भैया अपना जीवन है, इनसे तो अपन का प्राणवायु ऑक्सीजन मिलत है, सो भैया जे इनको काटने नहीं है ना कोई इन्हें काट पावे। और भैया देखो अब तो कुछ समय बाद बसकारी को मौसम आवे बारो है, सो अपन को ध्यान रखने कि अपन को नए पौधा जरूर लगाने हैं, ताकि आज जो अपन वृक्षा देखे थे बड़े वे कहूँ ना कहूँ भैया पौध के रूप में आए थे, सो अपन का नए पौध लगाने हैं और वृक्षा का भैया बिल्कुल नहीं काटना है, ताकि वृक्ष ही अपने जीवन है। और जब अपन ने वृक्षा की भैया बात करते हैं तो कछु ऐसे ही आज को अपना गीत भी है, सो अपन सुनते हैं जो लोकगीत, और ये गाँव है विनोद कुमार सैन भैया ने।

तो भैया रो अभी सुने अपन ने जो लोकगीत और ये गा हो तो विनोद कुमार सैन भैया ने। और बिल्कुल साची बात है भैया कि अपन का पर्यावरण बचाने हैं, क्या कि पर्यावरण को संरक्षण ही जीवन है भैया। अगर जीवन है तो भी भैया कुछ बात है। और वो एक बात का अपन को ध्यान रखना है कि पर्यावरण जौन है वो को साफ स्वच्छ हो भैया बहुत ज़रूरी है। और पर्यावरण साफ सुथरा होते बस एक चीज़ से भैया भैया पेड़ पौधे, तो अपन का गंदगी नहीं होने देने हैं। गंदगी भैया ना तो घर में होने देने हैं और ना घर के बाहर है होने देने। कछु भैया हमने देखे हैं कि भैया उनने क्या करे कि जैसे घर के बीच साफ़ सफाई करी और साफ़ सफाई करके आए हो भैया कूड़ा घर के बाहर भैया लगा दो, तो ऐसा अपन का नहीं करने। साफ़ सफाई जितनी भैया घर के अंदर की ज़रूरी है उतनी साफ़ सफाई भैया घर के बाहर की ज़रूरी है। तो ये बात को अपन का बिल्कुल दिमाग में रख लेना है। और जैसे कि भैया हमने कही थी कि देखो गर्मी का समय है और गर्मी के समय में खान पान भैया बहुत ही ज़रूरी है कि अपन खान पान को ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके दोपहर की बिरियाँ घर से ना निकलें। और ज़रूरी हो भैया तो सिर्फ गमछा या पानी की बोतल लेके घर से खाना खा के पानी पी के तभी भैया अपन का घर से निकलने हैं। भूखे पेट तो भैया घर से अपन का बिल्कुल भी नहीं निकलने। और रही भैया बात अपने स्वास्थ्य की, तो भैया स्वास्थ्य को लेके भैया अपन का ध्यान रखना है कि बिना मेहनत करें बिना व्यायाम करें भैया अपना शरीर स्वस्थ नहीं रहते। और भैया अपन तो ठहरे गांव देहात के, तो भुंसारे से अपन का देखो अपनों वैसे दिन में लगे रहते हैं अपन काम धाम में। भैया भुंसारे जल्दी उठे अपनों थोड़ा बाहर घूम फिर आए हैं और साइकिल जितनी चला सकें, आज साइकिल दिवस है तो भैया हम तो यही कहें अपने भैया बहनों से कि जितनी साइकिल चला सकें बस साइकिल चलावो, उनके लाने बड़ा फ़ायदेमंद है। पैसा रुपया की भैया बचत है और संगे संगे बचत काय की होते, संगे संगे बचत होते उनके के मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और शरीर भैया फिट रहे। कहते नहीं जब शरीर फिट रहते हैं अपन मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो फिर हर काम में भैया मन लगता है, वो चाहे कोनो काम हो। तो ये बात को अपन दिमाग में रखें और बिल्कुल साइकिल को भी अपन मजा ले। और कार्यक्रम का अपन आगे बढ़ाएं, उससे पहले सुने अपन जो संदेश।

0: और भैया यार देखो, जैसे अपन प्रदूषण की बात कर रहे थे, तो ऐसी भूमि को प्रदूषित होवे से अपन कैसे बचाएं, ये पे एक बड़ी उम्दा जानकारी अपने लगा है। और जानकारी दे रहे आर एन कुंड जी, और उनसे बतकाव करे है अपने सोहन सिंह भैया ने। सोहन, सुने जानकारी?
1: किसान भाइयों, आज का भौतिकवादी युग है और इससे शहरी क्षेत्र ही प्रभावित नहीं है, इससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और हमारी जो मुख्य आजीविका है भूमि, उस पर हम मल्टीपल क्रॉपिंग ले रहे हैं, बहुफसली खेती ले रहे हैं, जिससे उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होती जा रही है। और जितनी मात्रा में हमें पोषक तत्व फसलों के लिए प्रयोग करने चाहिए, उतनी मात्रा में हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे फसलों की उत्पादकता कम हो रही है। ये उत्पादकता बनी रहे क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है।

0: और सौभाग्य से आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जो ग्वालियर चंबल संभाग है, इसमें किस तरह का आप जो है भूमि के जो पोषक तत्वों की क्षमता है वो आपको दिखाई दे?
1: आपने बिल्कुल सही फरमाया कि खेती हमारे जीवन का मूल आधार है और बढ़ती जनसंख्या के मद्देनज़र ये और भी ज़रूरी हो गया है कि सीमित भूमि से हम इतनी पैदावार करें कि बढ़ती जनसंख्या की जो ज़रूरतें हैं कपड़े की, खाद की, खाद्यान्न की, वो सारी पूरी हो जाएं। इसके लिए चार मूल चीज़ें हैं जो खेतीबाड़ी के लिए ज़रूरी हैं, भूमि, पानी, बीज और जलवायु। देखने में यह आया है कि हमारी ज़मीनों में कुछ ऐसी परिवर्तन आ गए हैं जिसकी वजह से आज जो उसकी उत्पादकता है वो निरंतर घटती जा रही है। 60 के दशक में जब हम 1 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम डालते थे तो हमें करीब करीब 18 किलोग्राम अनाज मिलता था, जबकि आज 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मात्र हमें 6 किलोग्राम अनाज देता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। जो आप ग्वालियर और चंबल संभाग की बात कर रहे हैं, कई गांव में हमने मिट्टी के परीक्षण करवाए हैं और देखने में ये आया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये जो तीन प्राथमिक तत्व कहे जाते हैं, प्राथमिक फसल की खुराक कही जाती हैं, इनकी तो कमी है ही है। इसके अलावा निरंतर जिंक जो कि एक सूक्ष्म तत्व है, सल्फर जो एक द्वितीयक या सेकेंडरी तत्व है, उसकी भी कमी हो रही है। और फसल का विज्ञान इस तरह से है कि जो उसको 17 खुराक चाहिए, यदि वो पूर्ण मात्रा में नहीं मिलेगी तो आपको उत्पादकता नहीं मिलेगी।
0: डॉक्टर साहब, आपका कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो भूमि है उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही
0: बात। और किसी का भी स्वास्थ्य गिरने से हम उससे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी भूमि का स्वास्थ्य गिरे नहीं और हम जो उर्वरा शक्ति चाहिए वो बनाए रखें और फसलों से अच्छा उत्पादन लें, इसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें क्या प्रयास करने होंगे?
1: कि भूमि का उर्वरा शक्ति और उत्पादकता ये दो अलग अलग चीज़ हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति का अर्थ ये है कि पौधे को जितनी भी खुराकों की ज़रूरत है, जितने पानी की ज़रूरत है, वो सब ज़मीन से मिले। और उत्पादकता अर्थ ये है कि फसल उसमें पूरी की पूरी जितनी उसमें क्षमता है उतनी उत्पादन हो। इसके लिए भूमि सही होने के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि जलवायु, बीज, इन सब का भी बराबर का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि हम ज़मीन के बारे में बात करें, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, इसका जो अर्थ है वो ये है कि ज़मीनों के अंदर लगातार जो जैविक अंश है, जिसको वैज्ञानिक लोग ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर के नाम से जानते हैं, उसका लगातार ह्रास हो रहा है, वो कम से कमतर होता जा रहा है। कारण ये है कि पहले जो किसान हमारे कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जैसे गोबर का खाद डालना या हरी खाद डालना, वो सब उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया या बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जैविक अंश उसका घटता जा रहा है। और जैविक अंश घटने से उसमें ज़मीन के अंदर जो करोड़ों जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी संख्या के ऊपर भारी असर पड़ रहा है। किसान भाइयों को ये पता होना चाहिए कि जब किसी ज़मीन के अंदर ये जीवाणु या सूक्ष्म जीवाणु नहीं रहेंगे तो वो उत्पादकता अपनी खो देगी, क्योंकि पौधे को किसी भी ऑर्गेनिक या जैविक साधन से जितनी भी चीज़ें मिलनी हैं उनको परिवर्तन करने के लिए इन जीवाणुओं का बड़ा भारी रोल है। यदि वो जीवाणु खत्म हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो तो वो ज़मीन बांझ हो जाएगी। आप लगातार 1 से 2 कट्टे यूरिया, 1 से 2 कट्टे DAP और खाद की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी उत्पादकता घटती चली जाएगी। कारण सिर्फ ये है कि जैविक अंश उसके अंदर घट गया है और उसकी वजह से उस ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जिन्होंने खुराकों को इस रूप में परिवर्तित करना है कि पौधा ले सके, वो कम हो जाता है। इसके अलावा ज़मीन के अंदर जो जैविक अंश है उसकी ज़मीन की भौतिक स्थिति को बनाए रखने में बड़ी भारी भूमिका है। जैसे कि

0: जो ही उसके अंदर जैविक अंश बढ़ता है तो मिट्टी के जो अलग अलग कण हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में पानी को पकड़े रखने की, पौधे के खुराक को पकड़े रखने की ताकत बढ़ जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिसके अंदर उसकी जड़ें आसानी से फैल सकती हैं और जड़ों को सांस लेने के लिए आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। इस तरीके से जैविक अंश के रहने से जो ज़मीन का स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधर जाता है। लेकिन जो हमने उत्पादकता की बात शुरू की थी उसमें मात्र सिर्फ ज़मीन का स्वास्थ्य ठीक रखने से ही नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो अन्य तत्व हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई यूरिया DAP वगैरह डालते हैं जिससे नाइट्रोजन और फास्फोरस दो ही खुराकें मिलती हैं। उसके अलावा देखने में आया है कि इस संभाग के अंदर पोटाशियम की भी कमी है। इसके अलावा लगातार जिंक और सल्फर दो अन्य खुराकें हैं जिनकी कमी बढ़ रही है। तो इनकी मात्रा को भी जितनी कमी है और जितनी पौधे की आवश्यकता है उसकी पूर्ति बाहर से करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारी उत्पादकता बढ़ सकती है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे इस संभाग में ज़्यादातर जो फसल चक्र है वो किसान भाई धान और गेहूं और रबी के मौसम में सरसों का उत्पादन लेते हैं। क्या हमारे जो क्षेत्र में जिंक और सल्फर की कमी होती जा रही है, इसकी भी कुछ कारण है क्या?
0: ये आपकी धान और गेहूं दोनों ही फसलों को भारी खुराक लेने वाली फसलें के नाम से जाना जाता है, तो इसका भी कारण है कि लगातार क्योंकि वो ज़मीन से सल्फर और जिंक लेती जा रही हैं इसलिए ये दोनों चीज़ें घट रही हैं। और जब तक इन दोनों की पूर्ति के लिए किसान भाई वो चीज़ें नहीं करेंगे तो यूरिया DAP की मात्रा बढ़ाने से उनकी उत्पादकता नहीं बढ़ पाएगी।
1: डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या हमारे इस क्षेत्र में जो फसल विविधता है उसकी ज़रूरत है?
0: फसल विविधता की तो खेतीबाड़ी में सिर्फ इस संभाग में नहीं, जहाँ कहीं भी खेतीबाड़ी होती है वहाँ आवश्यकता है। अनेक किस्म की फसलें हैं जो ज़मीन को कमज़ोर करने की बजाय उसको मजबूत करती हैं, जैसे दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, जो कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन नाइट्रोजन को लेके वो ज़मीन के अंदर छोड़ देती हैं और उसकी वजह से ज़मीनें मजबूत होती हैं। इसके अलावा फसल विविधीकरण इसलिए भी आवश्यक है कि यदि आप एक ही चक्रों को बार बार दोहराओगे तो उससे जुड़े हुए जो जीवाणु हैं, जो रोगाणु हैं, जो उससे जुड़े हुए कई किस्म की बीमारियां हैं, उन चक्कर से जुड़े हुए जो कई किस्म के खरपतवार हैं उनकी मात्रा भी लगातार बढ़ती चली जाती है। यदि आपने इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करना है तो ये आवश्यक है कि फसल चक्र में विविध किस्म की फसलें डाली जाए ताकि एक ही किस्म का रोगाणु या जीवाणु या खरपतवार लगातार बढ़े नहीं।
1: डॉक्टर साहब, अंत में हमारे जो किसान भाई हैं अपनी जो भूमि है उसका पुनरुद्धार हो और अच्छी से अच्छी फसल लें, इसके लिए और क्या सलाह देना चाहें?
0: मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि फसल काटने के बाद जो भी अवशेष बचते हैं, चाहे वो जड़ है या डंठल है, उनको जड़ाएं नहीं बल्कि उनको रोटावेटर की मदद से अपनी ज़मीन में मिला दें। ये सोना है जो आपकी ज़मीन को सोना ही बना देगा। इसके अलावा जो सनई है या ढेंचा है, ऐसी फसलें जो 30-35 दिन में 3 फुट के आसपास की फसल हो जाती है, ऐसी फसलों को उगाएं और मिट्टी में मिला दें, जिसको हरी खाद के नाम से हम जानते हैं। गांव में जितना भी गोबर उपलब्ध है, क्योंकि हमें उसको ईंधन की आवश्यकता होती है, तो उसको ईंधन भी मिल जाए और हमें खेत में खाद भी मिल जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि वो बायोगैस लगाएं और उससे जो भी स्लरी बाहर निकलती है वो आपको खाद का काम दे देगी और उससे जो गैस निकलती है वो आपकी ईंधन की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। यदि तत्वों का सही ख्याल रखें, ज़मीन के अंदर जैविक अंश को बनाए रखें, मिट्टी को टेस्ट के आधार के ऊपर आप खादों का प्रयोग करें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संभाग के अंदर अपने किसानों तो तक कई गुना बढ़ा सकते हैं।
2: तो भैया रो वेपर ने सुनी जब भेंटवार्ता, भूमि को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं, जानकारी दे रहे थे RN कुंडजू और उनसे बदकाव करे तो सोहन सिंह भैया ने। और बिल्कुल साँची बात है भैया कि ज़मीन जब अपनी प्रदूषित हुई है भैया तो अपनी फिर खेती किसानी और काम फसल और काम बढ़िया होते और इनमें अपन का कोनो भी तरीका की दिक्कत नहीं आता। और भैया देखो, जब अपन ने बात करी है कि साफ़ सफाई रखना है, प्रदूषण रोकना है, तो ऐसे भैया अपनों खुद को भी ध्यान रखना है कि अपनी खुद की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। कहते नहीं है कि भैया जितना इंसान साफ़ सुथरा रात है, साफ़ सुथरे कपड़ा पहनते हैं, नियम से नहा धोते हैं, है ना, शरीर के हर अंग की सफाई करते हैं भैया, तो उन्हें फिर कोई रोग राय नहीं होते। और हम तो कहते भैया रोग राय को ना हो, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो उकलाने भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पास काम ज़रूर हुए भैया, और काम भैया कौन ना तो छोटो होते हैं और ना भैया कौन काम बड़ो होते हैं। हर काम की भैया अपनी एक कतनी है ज़रूरत होते हैं, एक महत्वपूर्ण हर काम होते हैं भैया, बस अपने काम करे को तरीका का है और वो काम को अपन कैसे कर रहे हैं। तो कहते हैं भैया कि देखो जब भी कौन काम का अपन मन से करते हैं तो वो काम में अपन का सफलता ज़रूर मिलत है। बस परेशानी का भी आता है भैया जब अपन कोनो काम का मन से नहीं करते हैं। तो अपन का कोनो भी काम होवे सबसे पहले ध्यान रखना कि ना तो कोनो काम छोटो है भैया और ना कोनो काम बड़ो होते, बस जो अपने सोचवे को तरीका है तो अपना तरीका जो रखना है कि भैया अपने पास काम है या बहुत बड़ी बात है और वो काम का बड़े मनोयोग से अपन का सकारात्मक तरीका से करना है। और कतनी भैया कि जब आदमी की सोच सही होते सोच सकारात्मक होते तो भैया फिर हर काम में सफलता मिलते है। तो अपनी सोच को ही भैया अपन का कैसे रखना है, सकारात्मक रखना है। और उकलाने ज़रूरी है कि अपन सकारात्मक लोगों के संग रहे, अपनी जो दिनचर्या है भैया बिल्कुल व्यायाम से शुरू कर पें, खान पान अपन को पौष्टिक रखना है, साफ शुद्ध भैया अपन का भोजन करने हैं। और संगे संगे जब भी अपन का कोनो तनाव होते या मन में कोनो ऐसी बात आती है जिससे अपन का दुख तकलीफ हो सकते है, वो बिना थोड़ा सा अपन अपने मन को बदलवें और कछु ऐसी बातें सोच में जिनसे अपने मन का प्रसन्नता मिलती है। तो अब जब भैया माटी की बात आते है और एक बात आते है कि भैया भूमि जो है अपनी उनमें प्रदूषण ना हो, और ऐसी भैया बात आते है माटी की कब है, जब अपन जी माटी में अपन जन्म लेते हैं तो वो माटी में भैया जन्म लेके अपन को कैसे लगते है और माटी की भैया क्या विशेषता होते है। कहते नहीं है कि जो अपनी जन्मभूमि होते भैया हर इंसान का भैया प्यारी होते, और ऐसी कछु बात कर रहे हैं अपने चंद्रभूषण पाठक भैया स्वपन सुनाते हैं जो लोकगीत है।

तो भैया अब अपन ने सुने जो लोकगीत रही है गाओ तो चंद्रभूषण पाठक भैया ने, और अब चलती भी रही है अपन सुनते हैं एक और लोकगीत और ये गाओ है बादाम सिंह भैया और संगी साथी ने।

तो भैया रो अपन ने सुने जो लोकगीत और ये गाओ तो बादाम सिंह भैया और उनके संगी साथियों ने। और बिल्कुल साची बात है भैया, जब अपन कोनो भी गीत संगीत सुनत हैं तो मन को बड़ी असीम शांति मिलत है भैया। और जब कितनी मन में शांति होते है ना, सोच अपनी अच्छी होते है, तो फिर कोनो भी काम हो भैया, हर काम करे में अपनों बड़ा मज़ा आता है भैया। तो बस कितनी है कि दिमाग को ठंडो रखने हैं, सोच को अच्छा रखने हैं, सोच की अपन का सकारात्मक सोच रखने हैं, और हर काम का भैया बड़े मनोयोग से करने हैं। और कभी भी कोई समस्या परेशानी आते है तो भैया उबेरा अपन कहाँ घबराए नहीं है, कितनी है कि गम खाने सहनशीलता रखने। और अब भैया गम खावे की बात तो जो है कि बतकाव करेगी तो भैया मन बहुत है, लेकिन वह कितनी है कि घड़ी अपने सामने रात है और घड़ी कहते हैं कि देखो अब 8 बजियाँ हैं, ब्यारों की बिरियाँ हैं। तो भैया अपन अगाऊँ बिल्कुल मिल हैं, अपनों बतकाव हुई है भैया, मनोरंजन हुई है। और संगे संगे हम तो भैया एक बात अपन से और कहें कि पढ़ाई लिखाई को अपन को बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो अपनी पढ़ाई लिखाई को होवे और चाहे भैया अपने बाल गोपाल की पढ़ाई लिखाई को होवे। उमें कोनू कसर कोनू कमी अपन का नहीं छोड़ने हैं, उमें अपन का बिल्कुल दिमाग लगा के रखना है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई लिखाई के भैया आज के इस ज़माने में अपन तरक्की नहीं कर सकते। और देखो आज को ज़माना तो तकनीकी को है, सो ये तकनीकी के ज़माने में तो अपन का चाहना है कि जो भी तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं वे अपन का सीखने हैं, उमें कोनू कसर नहीं जान देने हैं। और अब 8 बजे आ रहे हैं भैया, सो आज्ञा दो अपने भैया विवेक का, जय जवान जय किसान।

0: 18 साल, सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
2: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
3: Thank you very much.
4: Thank you.
2: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
3: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
2: Absolutely. Mr. Tandon.
4: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में जी, उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूँ, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया।
2: जैसे भी शरद जी ने
4: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
2: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो there has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people

0: exiting multidimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharadji?
1: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye, hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. You know, we've changed the definition because poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition. Ke aapka agar jeevan ka star sudhar raha hai, you know, on nutrition, on health, aapke paas ghar nahi hai, tomorrow you get a house, you don't have a water connection, now you have a water connection. And let's not forget about the toilets, which has been, you know, sanitation has been very close to Prime Minister's heart. You know, jungle mein aur kheton mein jaake, you know, toilet ka istemal karna ya wahan par idhar udhar baith ke mahilaon ke liye khaskar bahut. So I think now there are toilets at, so the multidimensional poverty index needs to be understood, Anubha, from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine. They may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
0: The facilities that are very basic facilities, which is everybody's right and which should they should get.
1: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were the basic amenities which I was lacking. And it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pahunchaya, aur middle class to usme aati aati, kyunki isse naukriyan bani hain, isse logon ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun jo Tandon sahab meri baat se agree karenge, ke ab mujhse jab log poochte hain, kyunki hota kya jab aapki zindagi mein ye sab ghatnaen ghatti rehti hain welfare schemes, to you take it in your stead, aapko lagta hai theek hai ye to hona hi tha, bhai ye to mera haq hai, wagaira wagaira, aise khayal aate hain. Par bahut acha tarika isko dekhne ka kya hai, which I am sure the listeners of Akashwani would like to dwell upon and deep dive, is ke aap 2014 mein जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं? तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिला के ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
0: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है. और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है. और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो GDP के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी GST, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर

0: पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
1: बिल्कुल।
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल। सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड एंड लॉट ऑफ यंगस्टर्स। एंड टुडे जस्ट ऑन स्टार्टअप इंडिया देर आर 2 लाख प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, एंड यू नो यू विल नॉट बिलीव दैट द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय दी स्टार्टअप टुडे इज 2.3 million प्लस पीपल हु हैव बीन एम्प्लॉयड। And government has created a startup fund
1: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel.
1: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers
1: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
1: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You know, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
1: they
2: a very, very active GDP.
1: In fact, actually,
2: we did an analysis recently, which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: right.
2: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30% and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati hai, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, और जब से जीएसटी 2.0 आया है उसने तो ऐसा लगता है जीएसटी को पीपल हैव ओपन्ड देयर आर्म्स एंड एम्ब्रेस्ड इट, उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया है।
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है. बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स. सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी बट आफ्टर दैट लास्ट ईयर वी सॉ द जीएसटी 2.0 ऑल्सो हाउ हैव दीज टैक्स रिलेटेड

0: Did reforms in the past decade impacted middle class? So Tandon, what would you say to that?
1: देखिए इसमें एक और पहलू भी है
0: जी.
1: कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ जी. मिलाकर तो टैक्स रिफॉर्म जो है आपने जिनके जिक्र किया उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें हम लोगों को 40-40, 50-50 हज़ार रुपए साल का टैक्स बचा है तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं तो ये सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास आज बहुत खुश है और शायद मिडिल क्लास की 4-5 लेयर्स को भी अगर हैं अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा
0: शरद जी यू नो बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन यू नो दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज यू नो इनफैक्ट चेंज 4 टाइम्स इट हैज इंक्रीज 4 टाइम्स सिंस 2014 बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स इट्स द प्रोसेस ऑफ यू नो द ट्रांसपेरेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन दिस होल प्रोसेस सो वट वुड यू से टू दैट हाउ हैज इट मेड द लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लास you know much easier and not more than that would you say that you know the fact that the government has made the process so easy and if we look at the number of ITRs filed in fact last year more than 8 crore ITRs were filed that's also showing the government the Modi government's trust in the people in their honesty and it's a salute to the middle class
2: all right we call that a sabka vishwas a government has gained that vishwas where people come forward and file the, and I'll give you a very interesting you know dynamics of this whole tax you know number which you spoke of
0: Jee.
2: about 9 crore returns were filed and you know the real taxpayers the people who actually paid tax they were about 3 crore or so but then because it's mandatory to file the return so people participated in that activity people came forward and they have now understood with 12,75,000 rupees of income for the first time in India is tax exempt you know we did a case study mm-hmm. of a couple who were both earning one was earning about 5 lakhs and the other was earning about 7 lakhs about 12 lakhs of earnings now they were not able to save for earlier for investments for SIPs for health insurance combined together they saved tax about a lakh of rupees now this lakh of rupees is going into health insurance is going into insurance is going into their retirement planning as well and you know it'll be unfair Anubha if when we talk of tax and we don't talk of the tax savings made by GST somebody asked me that only 3 crore people in India yes. pay tax I said no every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation so this GST 2.0 has put money in the pockets of people and because primarily we are a consumption driven economy yes. 55 to 60% of our economy comprises of when me and you and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers from service providers so I think that has taken a big boost and in the current scenario when global economy is facing challenges It is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
0: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli.
2: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
0: Financial inclusion?
2: Absolutely. You know, Jan Dhan Yojana, more than 56 crore accounts. And these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. Yeah. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
0: Yes.
2: I think this has been transformational. And lot of countries around the world now want to emulate that
0: Absolutely.
2: Example. So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
0: Ashok ji, aap kuch
1: kehna chahte hain? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Jan Dhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikli hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है सरकारी नौकरियां हो निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया, दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है, ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ।
0: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है। पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है, उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
2: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव, आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
0: थी, डिजिटल डिवाइड, जिसको
2: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन। टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड के आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कैसे ये कोविड में हम करते पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती, बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ। आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है,
0: जो पिछले 12 सालों में काम किया,
2: काम किया है, उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
0: अशोक जी, आप कुछ कहना?
1: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
0: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way because we pick up anything. For example, highways. Any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people ke hum sari umar mein sochta tha kab main hawai jahaz mein baithunga. Aaj mujhe lagta hai aap agar kisi bhi hawai yatra mein jaye, aapko ek aam aadmi usme dikhega. Ab wo aisi luxury nahi hai. Chote chote airports ko banakar unko connect kar dena aur chand minton mein ya ghante mein pahunch jana, jiske liye aap sari raat ki journey karte the. Aapko yaad hoga Rajdhani aur Shatabdi, akeli trains hua karti thi jo ki premium boli jati thi, jaldi pahunchna hai. Aaj Vande Bharat leke aap kuch ghanton mein ek jagah se dusri jagah aur aise comfort पहुंच रहे, which is of international level. The things we used to watch internationally, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें reclining seats होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. So I think this government has brought luxury, which used to be called earlier, as a comfort and necessity to the people of the country.
0: And you know, that brings me to my next question, क्योंकि आप जैसे बात करें कि infrastructure में जो improvement हुआ है, be it roads, be it railways, be it, you know, airports, जो expansion हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास world class ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल

0: है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अशोक जी पहले आपसे।
1: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
0: शरद जी आप क्या कहेंगे, हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
0: यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle-class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle-class women, which in turn, you know, have made the middle-class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
1: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी में, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
0: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई said earlier, they are in the mainstream. The percentage of women who are involved in the mainstream, that is increasing. And this is, Anubha, not just happening in the towns.
0: Ji.
2: I find a lot of women, as Mr. Tandon said, that, you know, the self-help groups hain. Wahan par mahilayein ikhatti hoke kuch business shuru kar rahi hain. Ministry of Cooperative ban gayi hai, jahan se bahut sari cooperative societies ke zariye

0: ये महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभा, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा अनुभव, आई थिंक be able to relate, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी है, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News On Air. This program is also available on our YouTube channel, News On Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण।

बैजू बावरा का फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। शकील बदायूनी हैं गीतकार और संगीतकार नौशाद।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का। श्रोताओ, एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने के संबंध में ये सूचना है। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर को आमंत्रित किया जाता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड और निशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों और आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और दूसरी ईमेल है hopeairbhopal@gmail.com। इन दोनों ईमेल पर से किसी पर भी आप अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा

0: में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोक भवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
6: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
5: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
7: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है।

0: डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritavrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
6: ATF price stabilization fund
7: A self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
6: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
5: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradeep in Odisha.
6: Odisha mein coastal highway jiska phase 1 aaj approve hua hai.
7: In Odisha, the phase 1 of the coastal highway was approved today. It will extend from Rameshwar through Konark up to Paradeep, covering the stretch from the southern tip of Odisha to its central region, reaching Paradeep. Additionally, a very important highway project has been approved in Bihar, that is the four laning of the road between Khagaria and Purnia.
6: Khagaria se Purnia ke beech mein four laning.
5: In West Bengal, Social Security Scheme Annapurna Yojana was formally launched in the state today by Chief Minister Shubhendu Adhikari, transferring 3,000 rupees directly into the bank accounts of over 28 lakh women. Five women were symbolically handed approval letters during the ceremony. In a major political development in West Bengal, Ritabrata Banerjee has been appointed as the leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. More from our correspondent.
8: Ritabrata, a former CPIM Rajya Sabha MP who later joined the Trinamool Congress, secured the backing of nearly 60 MLAs, enough to cross the two-thirds mark required under the anti-defection law. The move has triggered a major split within the Trinamool Congress. Mamata Banerjee's faction had earlier nominated Shobhandeep Chattopadhyay as leader of the opposition. Speaking to reporters after meeting the speaker, Ritabrata claimed that the dissident legislatures now constitute the real and main opposition in the House. He said his group will act as a constructive opposition, supporting the government when needed, but standing firm against policies they oppose. The development comes amid an intense political crisis within the Trinamool Congress, which has been facing internal dissension following the recent assembly elections. The party had earlier expelled MLA Ritabrata and Sandeep Shaha over alleged anti-party activities. Political observers are calling this one of the most significant challenges to Mamata Banerjee's leadership since she came to power, drawing comparisons to the Shiv Sena split in Maharashtra. Legal battles and further defections are expected in the days ahead.
5: To strengthen surveillance and infrastructure along the India-Bangladesh border, the West Bengal government has approved the transfer of nearly 32 acres of land to the Border Security Force. At today's cabinet meeting in Nabanno, approval was given for the permanent transfer of this land for building border fences, security posts and other facilities. After the meeting, Minister Dilip Ghosh announced that a total of around 32 acres across several border districts have already been transferred to the BSF. In Karnataka, senior Congress leader D.K. Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of the state today. Governor Thavarchand Gehlot administered the oath of office. Dr. G. Parameshwar, who held the home portfolio in the Siddaramaiah cabinet, was sworn in as Deputy Chief Minister. 12 legislators also took oath as cabinet ministers. Several senior Congress leaders, including Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge, Chief Ministers of Telangana, Kerala and Himachal Pradesh, attended the ceremony. Prime Minister Narendra Modi has congratulated D.K. Shivakumar on taking oath as Chief Minister. In a social media post, Mr. Modi conveyed best wishes to him for his tenure. In a massive fire at a hotel in Malviya Nagar in Delhi this morning, 21 people, including foreign nationals, lost their lives, while 40 others were rescued. DCP of South Delhi, Anand Mittal, said the fire has been successfully extinguished and the injured have been shifted to nearby hospitals for medical treatment. 26 people are currently receiving medical treatment. 10 police personnel who rescued several trapped occupants were hospitalized after suffering suffocation during the operation. The Delhi police has filed an FIR under charges of culpable homicide in the incident. We have a report from our correspondent.
9: The Municipal Corporation of Delhi has also ordered an investigation into the incident. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has said that beginning tomorrow, a high-intensity month-long enforcement and prevention drive will be launched under the joint leadership of District Magistrate, Deputy Commissioner of Police and Deputy Commissioners of MCD to conduct rigorous fire compliance inspections, audits and sealing of identified non-compliant establishments including hotels, guest houses, nursing homes, coaching centers and other vulnerable premises. Anpamish, Akashwani News, Delhi.
5: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah have extended condolences over the loss of lives due to the tragic fire incident. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the middle class.
10: Over the past 12 years, the government has empowered India's middle class through wide-ranging reforms. Simplified taxation and stronger banking, insurance and pension systems have enhanced their financial security. Under the new tax regime, individuals earning up to 12 lakh rupees annually are paying zero tax. For the middle class, specifically, GST has delivered several tangible benefits by simplifying taxes and lowering everyday costs. The Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, launched in 2015, has transformed the lives of crores of people by providing them with secure housing. Out of the total 1 crore 25 lakh sanctioned houses, over 98 lakhs are completed or delivered to beneficiaries across the country so far. Talking to Akashwani News, Abhishek Kumar from Uttar Pradesh said the scheme is ensuring housing for the poor and bringing relief to those living in rented accommodation.
11: My name is Abhishek Kumar. I had applied under the Pradhan Mantri Awas Yojana 2 years ago. After submitting my application, I was allotted a house through a lottery draw. Following the allotment, I have been paying the required installments. Once all the installments are paid, the property registration will be completed in the coming months. After that, I will receive possession of the house. This is a very good scheme as it is helping poor people get access to housing.
10: Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has enabled 43.52 crore health cards expanding access to health care protection. While Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana scheme is providing quality generic medicines at 50 to 80% lower prices through Jan Aushadhi Kendras. Talking to Akashwani News, Brahmadev of Bihar said that the medicines at these Kendras are available at very affordable price than the market.
12: My name is Brahmadev Malhaka. I am from Muzaffarnagar district in Bihar. I have been purchasing medicines from here for about a year. The medicines are available at affordable prices. The doctor advised us to buy medicines from Jan Aushadhi and we followed that advice and regularly purchase our medicines from here. If we want to buy the same medicines from outside, they are much more expensive. This government initiative helps solve the problems of the poor people.
10: The Pradhan Mantri Mudra Yojana, launched in 2015, has also evolved into a powerful instrument of empowerment. Under the scheme, 40 lakh crore rupees of loans have been disbursed to the beneficiaries so far. As incomes rise and opportunities expand, India's middle class is actively driving the nation's growth, ambition and future prosperity. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
5: Prime Minister Narendra Modi has congratulated Mette Frederiksen on assuming office as the Prime Minister of Denmark for a remarkable third consecutive term. In a social media post, Mr. Modi said India and Denmark share an enduring partnership founded on mutual trust, shared values and a common commitment to a sustainable future. The Prime Minister said he is looking forward to working closely with Mr. Frederiksen to further strengthen the India-Denmark Green Strategic Partnership and take the cooperation to new heights for the benefit of the people of both countries. United States Ambassador to India Sergio Gore has said 99% of the proposed India-US interim trade agreement has been finalized and both sides are working to resolve the remaining issues. Speaking at the CITI 2026 India conference in Mumbai today, Mr. Gore expressed confidence that the agreement could be concluded within the next few weeks. The Iran conflict has entered a severe new phase of escalation as Iranian ballistic missiles and drones struck U.S. military bases across Kuwait and Bahrain in the early hours today. A drone strike broke through Kuwait's air defenses and hit the main passenger terminal at Kuwait International Airport, killing one Indian national and injuring 63 others. Injuries ranged from blast wounds and amputations to head trauma and cerebral hemorrhages. The Indian Embassy in Kuwait confirmed the death of one of its nationals in the attack, expressing its deepest condolences to the bereaved family and saying the mission is closely coordinating with Kuwaiti authorities to provide all possible support. The Indian Meteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang, 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritwik Agarwal defeated Chinese Taipei Xiang, Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Sivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
13: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मर मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत एफआईआर दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मर्तबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलाकवामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
6: एटीएफ प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। एटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
13: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खत्ते से मुतालिक मनसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
6: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
13: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने उड़ीसा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। मगरबी बंगाल में अहम सियासी वाक़े के तहत रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लेजिस्लेचर के एक बागी ग्रुप को एक अलहदा कानून साज पार्टी के तौर पर असेंबली के स्पीकर की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद ये तकरीरी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
14: रीता ब्रता, जो सीपीआईएम के राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें तकरीबन 60 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है, जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के कानून के तहत जरूरी 2/3 से ज्यादा है। ममता बनर्जी के ग्रुप ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को ओपोजिशन का लीडर नामजद किया था। स्पीकर से मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए रीता ब्रता बंदोपाध्याय ने दावा किया है कि बागी लेजिस्लेचर्स ने अब ऐवान में हकीकी और असल ओपोजिशन तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप एक तामीरी ओपोजिशन का किरदार अदा करेगा और जब जरूरत होगी हुकूमत की हिमायत करेगा, लेकिन जिन पॉलिसियों की वो मुखालफत करेगा उन पर साबित कदम रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के दरमियान शदीद सियासी बहरान के तहत ये वाकया सामने आया है, जिसे हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अंदरूनी बगावत का सामना है। पार्टी ने इससे पहले अरकान असेंबली रीता ब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बिना पर पार्टी से निकाल दिया था। سیاسی ماہرین اس واقعے کو جب سے وہ اقتدار میں آئی ہیں اس وقت سے ممتا بینرجی کی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ کولکتہ سے سوندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
13: کرناٹک میں کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شیو کمار کو ریاست کے 25ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ گورنر تھاور چند گہلوت نے انہیں عہدے کا حلف دلایا۔ ڈاکٹر بی پرمیشور، جنہوں نے سدھارامیہ کابینہ میں داخلی امور کے فرائض انجام دیے تھے، انہیں نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا۔ 12 قانون سازوں نے بھی کابینہ وزراء کے طور پر حلف لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلائے جانے پر مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ان کی مدت کار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج صبح مالویا نگر کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 40 دیگر کو بچا لیا گیا۔ جنوبی دلی کے ڈی سی پی اننت مٹل نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ابھی 26 افراد زیر علاج ہیں۔ 10 پولیس اہلکاروں کو بھی آگ میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کارروائی کے دوران سانس لینے میں دشواری کے سبب اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ دلی پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
15: دلی پولیس نے جنوبی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ارادتاً قتل کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ اس سانحے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ دلی میونسپل کارپوریشن نے واقعے کی چھان بین کا حکم جاری کیا ہے۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا ہے کہ ڈی ایم، ڈی سی پی اور ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر کی مشترکہ قیادت میں کل سے ایک ماہ کے دوران آگ لگنے کی روک تھام پر عمل آوری سے متعلق معائنے، آڈیٹس اور عدم تعمیل کی صورت میں سیلنگ کی کارروائی کرنے کے لیے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسوں، نرسنگ ہومز، کوچنگ سینٹرز اور دیگر مراکز کے معائنے کی مہم شروع کی جائے گی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
13: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آگ لگنے کے سانحے میں ہوئے جانی نقصان پر رنجو افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل ہوگی۔ 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات کے نتیجے کا اعلان بھی کل ہی ہوگا۔ شہری بلدیاتی اداروں کے عام اور ضمنی انتخابات اور 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات پچھلے پیر کو ہوئے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور جوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
16: گزشتہ 12 برسوں میں حکومت نے وسیع اصلاحات کے ذریعے بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے۔ ٹیکس نظام کو سہل بنایا، بینک کاری کو مستحکم بنایا اور پینشن نظام نے اس طبقے کے مالی تحفظ کو مزید بہتر بنایا ہے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت 12 لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی والے افراد کو ٹیکس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایس ٹی میں اصلاحات کے ذریعے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا شہری اسکیم کے تحت کروڑوں افراد کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ اس اسکیم سے کرائے پر رہنے والے افراد کو نمایاں راحت ملی ہے۔
17: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا۔ آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرا کے مادھیم سے مکان آوٹت ہوگی۔ اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں۔
16: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख हेल्थ कार्ड जारी किए गए, जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज़ फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनेरिक दवाएं 50-80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
18: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
16: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
13: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकतदारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दहरीना सकाफती ताल्लुकात हैं, जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वें सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी एलियोना रॉड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा, इक्तिसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादला ख्याल करेंगी। इस तबादला ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज, तजारत सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिले तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तावुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं, जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंगयांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबा बंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Çerçeka Müşehri. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जे पी एस डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जे पी एस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
3: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं, फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मानसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए।
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन से स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीआर इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 ओवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जब फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषण क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए जमीन के अंदर जाए या हमारी फसल को मिले और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान

0: कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो के साथ ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन, मास मीडिया है, और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है, और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो
1: जी बिल्कुल,
0: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हराश नहीं होने देंगे, और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए, और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न, सब्जी, फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
0: मानसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मानसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घ अवधि औसत का, इसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घ अवधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वही मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घ अवधि औसत का, उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से 4 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
0: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है, उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
0: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है
2: और बरसात ज्यादा है तो वहाँ पे जल निकासी का भी होना

0: जरूरी है, लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही,
1: जी
0: अगर धान की सब क्षेत्र नीचे हैं जिसमें पानी खड़ा होता है, तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग उसको ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। और अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें कि 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहाँ पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के, तो या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भाग की बात की, मध्य भाग की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: कृषि वैज्ञानिक गाँव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती है,
1: बिल्कुल
0: खासकर
1: डबाल जी
0: सब्जी और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं
0: तो
1: आप
0: उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और
1: जी।
0: मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
0: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है, भारतवर्ष के कहे या मुख्य अगर कॉज बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट हो रहे होते हैं उन प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का, जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच के लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक
2: भारत के मॉनसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी अलिनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एलिनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब लानिना कंडीशंस होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एलिनो कंडीशन यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में एक बहुत बृहद सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एलिनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एलिनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है। यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यह भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
0: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30-35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आजकल एक फाल साथ निवारण आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं, और हमें अपने किसानों पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा

0: सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: दीपाल
0: साथ
1: जी,
0: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितने अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म इन्वायरमेंट की कंडीशन होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका, ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो उसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है, और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है?
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सारी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई हैं जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले वो सक्षम कर सकते हैं। तो उस सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री, कृषि अर्थशास्त्री हैं, उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है, और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, और भारत ने पिछले एक दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
0: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम विज्ञान, अगर

0: पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, कि वातावरण में एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सेटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी
0: इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: प्रस्तुत है नाटक अशोक वन का पेड़। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं जगदीश अधिकारी।

0: बाबा।
1: हाँ
0: अरे ओ बाबा,
1: हाँ
0: ये पहाड़ी गांव क्या नाम, सिंगारपुर, वो किधर है?
1: सीधे सीधे भैया, बिल्कुल सीधे चले जाओ। वो जो अगली पहाड़ी पर सुंदर सी बस्ती है ना, वही है सिंगारपुर।
0: अच्छा, जो बिल्कुल सीधे।
1: हाँ
0: वो क्या है बाबा, शहर से नया आया हूं ना, इसलिए आपको तकलीफ दी।
1: सुनो बेटा, मेरी कुछ सहायता कर सकते हो?
0: सहायता? बाबा कैसी सहायता?
1: अरे वो वहां से थोड़ा सा पानी ले आना बेटा।
0: अच्छा, पीने के लिए पानी चाहिए आपको? अब मेरे पास है, आपको दे देता
1: अरे
0: हूं।
1: नहीं नहीं बेटा, इस पौधे में डालने के लिए चाहिए।
0: बाबा ये आप ये जमीन क्यों खोद रहे हैं?
1: भाई इस पौधे को इस जमीन में उगाने के लिए।
0: ये लीजिए पानी।
1: गांव तो सीधा है बेटा, धीरे धीरे निकल जाओ, सिर पर धूप चढ़ने से पहले शायद गांव पहुंच जाओगे।
0: धन्यवाद बाबा। अच्छा बाबा एक बात बताइए, आप इस उम्र में भी?
1: उम्र? उम्र तो कोई यही 70 साल होगी बेटा।
0: बाबा पर लगती तो कुछ ज्यादा है।
1: हाँ, सिर्फ कुछ साल और बाकी होंगे, जीना तो पड़ेगा ही बेटा।
0: हाँ बाबा कुछ साल या कुछ महीने भी तो हो सकते हैं ना बाबा। और फिर भी आप इस पौधे को उगाने के लिए बैठे हैं, भला क्यों?
1: अरे हाँ भाई, तभी तो ये पौधा मेरे सपनों का पेड़ बनेगा।
0: अब एक बात कहूँ बाबा?
1: हाँ
0: अब देखो बाबा, अब मैं आपका कोई करीबी रिश्तेदार तो हूँ नहीं जो आप पर हक जता सकूँ, पर हाँ आपका हितैषी जरूर हूँ। बस इसी नाते आपको एक राय देना चाहता हूँ।
1: बोलो बोलो।
0: अब बाबा छोड़ दीजिए ये पागलपन, अब इस उम्र में इससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।
1: पागलपन?
0: हाँ बाबा, और वो भी इस उम्र में।
1: अरे पेड़ उगाना क्या पागलपन है बेटा, है?
0: तो बाबा और क्या कहा जा सकता है?
1: अरे ये भी तो सोचो भाई, आज अगर पेड़ लगाऊंगा तो कुछ 1 सालों के बाद ये बड़ा होगा, अपने गोल गोल तनों और असंख्य शाखाओं के साथ, और फिर इसकी सुंदर सी नाजुक पत्तियां जाने कितनों को छाया देंगी। उसके कुछ एक दिनों बाद उस कोमल सी शाखा में एक नाजुक सा फूल खिलेगा, और उसके बाद फल 1, 2, 3, 4, 5 और
0: हाँ 6, 7 बाबा, लेकिन उसके बाद?
1: पेड़ बड़ा होगा, बहुत बड़ा।
0: पर बाबा बाबा तब तक आप मेरा मतलब बाबा, आप तब तक शायद ही जिंदा रहेंगे।
1: हाँ शायद।
0: तो बाबा फिर ये पेड़ क्यों लगा रहे हो आप, किसके लिए?
1: हाँ बेटा, हाँ वृद्ध हो गया हूं ना, और कुछ दिन या महीने के बाद शायद जिंदा ही ना रहूं। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो मैं कहाँ इस पेड़ का फल खा पाऊंगा या इसकी शांत सुंदर छाया में बैठ पाऊंगा। मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरे पोते पोतियां क्यों बेचैन होकर खाली आसमान से प्रश्न पूछें? मैं तो ये पेड़ उनके लिए उगा रहा हूं बेटा। और फिर बेटा एक बात बताओ, हम जो फल खा रहे हैं वो पेड़ क्या हमने लगाए हैं?

0: उस वृद्ध आदमी का पेड़ उगाने का जुनून देखकर मेरे मन में एकाएक प्रश्न उठने लगा, आखिर हम पेड़ किस लिए उगा रहे हैं? उत्तर ढूंढने की जी जान कोशिश में डूब गया था मैं। कल्पना के सागर में डूबता उतरता जैसे मैं बातचीत कर रहा था एक पेड़ से सपने में, अपने अवचेतन में। बहुत बड़ा विशाल पेड़ होगा, फूलों की भीड़ में उमड़ पड़ेगी पेड़ की सभी शाखाएं, और महान शक्तिशाली सूर्य की किरणों को रोकते हुए पेड़ के नीचे गढ़ेगी शांत शीतल छाया की परिसीमा। और फिर किसी कोने में छोटा सा घर बनाएगी नन्ही नन्ही चिड़िया, चिड़ियों की मधुर चहचहाट से गूंजेगा ये आंगन, और बसंत में कोयल छेड़ेगी अपना मधुर गीत।
1: हाँ, कहते जाओ युवक, कहते रहो। इन शब्दों से, तुम्हारे एक एक वाक्य से मेरा अल्लड़ सा यौवन रोमांचित और पुलकित हो रहा है। भविष्य के सुंदर सपनों से मैं और उत्साहित हो रहा हूं। बताओ युवक, कहते जाओ अपनी कहानी का हर खंड, उसकी सभी पंक्तियां, सभी अनुच्छेद, पूर्ण विराम तक। कहते जाओ युवक, कहते जाओ।
0: हाँ हाँ, पर पेड़ ये क्यों नहीं सोचते कि इससे पहले कोई तूफान भी तो आ सकता है?
1: नहीं युवक,
0: बाढ़ आ सकती है, या फिर तुम्हारी ही किसी शाख पर शायद कोई जहरीला अजगर छिप सकता है।
1: नहीं,
0: और फिर तुम्हारे उन पक्षियों के सुंदर सलोने घोंसले, इन्हें कैसे बचाओगे तुम? सोचा है कभी?
1: नहीं युवक।
0: और फिर एकाएक अचानक भूकंप भी तो आ सकता है।
1: बस करो युवक।
0: ये सब तो सिर्फ आशंकाएं हैं, भयानक ही सही, पर किसी न किसी युवक के हाथ में कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ना तो निश्चित है।
1: चुप कर युवक। यूं तुम्हारे बोले हुए हर शब्द मुझे मुझे बेचैन कर रहे हैं। क्यों मेरा सुंदर सा सपना ईंट पर बिखरता नजर आ रहा है? क्यों युवक, क्यों?
0: अब पेड़, ये क्या कह रहे हो तुम?
1: वही जो तुम्हें करना चाहिए, जो वो वृद्ध कर रहा है।
0: जिंदगी और मौत के साथ आंख मिचौली करता 60-70 साल का ये बूढ़ा अपने वंशजों के लिए कुछ आदर्श मात्र रखने के लिए जो कोशिश कर रहा था, और इसी संकल्प को लेकर भिड़ा हुआ है सुबह से शाम तक, तो मुझे भी वही करना चाहिए।
1: वही तो मैं कहता हूं युवक, तुम कुछ पेड़ नहीं उगा सकोगे। एक बार सोच लो, ये जो आशंकाओं का घेरा मुझे और शायद तुम्हें भी आतंकित करते हुए बेचैन कर रहा था, उसका क्या कुछ समाधान नहीं? आदमी के हमेशा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अनगिनत पेड़ काटने की निर्दयता करता रहेगा, उसे तुम रोकने की कोशिश भी नहीं करोगे? तुम्हें कुछ करना होगा युवक, कुछ करो। सब कुछ खत्म होकर काल के गर्भ में विलीन होने से पहले कुछ करो, पेड़ के लिए कुछ करो।
0: हाँ हाँ मैं कुछ करूंगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं सबको जागृत करूंगा, सबके दिल और दिमाग में पेड़ों के लिए प्यार, मोहब्बत, इज्जत, त्याग, बलिदान के जज्बों की मशाल जलाऊंगा। मैं अपने सुंदर पर्यावरण को अकाल मृत्यु से बचाऊंगा। हाँ मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगा।
2: बादल, ए बादल, देखो ना वो पेड़, वहां जाएंगे ना हम।
3: वहां? वहां जाकर क्या करोगी वर्षा?
2: बैठेंगे।
3: क्या? सिर्फ बैठेंगे?
2: बातचीत करेंगे।
3: यानी गुफ्तगू।
2: जैसे जैसे सभी प्यार करने वाले करते हैं।
3: अच्छा, बिल्कुल जाएंगे।
2: और एक दूसरे से हम भी तो।
3: वर्षा, वहां नहीं जाएंगे।
2: क्यों?
3: वहां कवि की कल्पना के नायक नायिका बैठते हैं, पेड़ के नीचे, समुद्र के किनारे।
2: तो हम क्या काल्पनिक हैं?
3: हम कवि की कल्पना और कहानीकार के चरित्र के अंदर जैसे खुद नहीं है वर्षा।
2: तो बादल, हम पेड़ के पास नहीं जाएंगे? तो आओ अब वास्तविक दुनिया में आ जाएं।
3: वर्षा के पास?
2: छोड़ो ना। जानते हो बादल, वर्षा जिंदा तो है मगर अधूरी सी है। अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही, सब कुछ खाली खाली सा लगता है।
3: ए, ये अधूरापन कैसा है वर्षा?
2: मेरा अधूरापन तो तुम भरोगे ना बादल, मुझे अपना कर।
3: वर्षा, मेरी मजबूरियां तुमसे छिपी नहीं है। देखो ना, अधूरा तो मैं हूं।
2: बादल, तुम इतनी छोटी सी तकलीफ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना रास्ता खुद क्यों नहीं बनाते?
3: कैसे बनाऊं वर्षा, एक सामान्य परिवार का अभावग्रस्त लड़का।
2: और मेरे पास कहां है संपत्ति? अभावों को रास्ते का रोड़ा मत बनने दो बादल।
3: वर्षा,
2: 2 महीने बाद तुम नौकरी तलाश करने वालों की कतार से भी रिटायर हो जाओगे।
3: तुम ठीक कहती हो वर्षा, देखो मैं उच्च शिक्षित हूँ, नौकरी नहीं मिली तो?
2: तुम्हारे लिए नौकरी ही सब कुछ है बादल, क्या तुमने मेरे बारे में भी कभी सोचा है? इस पेड़ जैसी मेरी स्थिति भी नहीं लगती, सब कुछ होते हुए भी अधूरापन, एक अनजाना सा डर।
3: क्या करें वर्षा, चलो वापस चले।
2: हमें इस पेड़ के पास आना ही नहीं चाहिए था।
3: क्यों?
2: बादल, मैं इस पेड़ जैसी नहीं बनना चाहती, हमेशा एक भयानक हादसे से भयाकांत।
3: वर्षा,
2: 60-70 साल के होने के बावजूद पापा आज भी पेड़ लगाते हैं बादल, पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं वो, मुझसे हर वक्त उनकी देखभाल के लिए ताकीद करते रहते हैं। लेकिन बादल, न जाने क्यों पापा का पेड़ों को लेकर तर्क मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अक्सर उनके अतीत से प्रश्नों के साथ उलझ पड़ती हूँ। जानते हो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
3: पेड़ों को लेकर?
2: हाँ।
3: क्या हुआ था?
2: तुम सुनोगे वो कहानी?
3: अरे बताओ ना।
4: पेड़ में पानी दे दिया बेटी?
2: पानी की अब जरूरत नहीं है पापा, पेड़ बड़ा हो चुका है।
4: अरे उसे तो और बड़ा होना है।
2: और बड़ा?
4: इसीलिए शुरू से ही अच्छी देखभाल करनी चाहिए।
2: आप पेड़ के बारे में कह रहे हैं ना पापा?
4: हाँ?
2: अच्छा, मैं सोच रही थी कि आप मेरे बारे में।
4: क्या कह रही हो बेटी?
2: पापा, आदमी पेड़ जैसा नहीं बन सकता ना।
4: अरे पगली, क्या हो जाता है तुझे, कभी कभी इस तरीके के अजीब सवाल कर लेती है, हैं? जा बेटी जा, पानी ठीक से डाल दे। पेड़ अभी संभल चुका है, सही ढंग से देखभाल करेंगे ना तो जल्दी फूलेगा फलेगा। हाँ
2: पापा, मैं सोच रही थी।
4: क्या?
2: वो उस सपने के बारे में जो मैंने आज सुबह देखा था।
4: अरे सपना तो सपना होता है बेटी, सपने तो सभी देखते हैं, हैं? और उसे कहने और सोचने की क्या जरूरत है?
2: जरूरत है पापा।
4: वर्षा, अब तुम बच्ची नहीं हो भाई।
2: हाँ पापा, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ?

0: मैं भी जानती हूँ कि मैं काफी समझदार हो चुकी हूँ और इसीलिए बिना संकोच के मैं बादल और अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ।
1: वर्षा, अपने पिता के सामने भी कोई संकोच नहीं है? कुछ पढ़ लिख गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आंखों की शर्मो हया भी जाती रहे?
0: आप जवाब देंगे पापा मेरे कुछ सवालों का सीधा सीधा जवाब?
1: कैसे सवालों का जवाब?
0: वो सवाल जो शायद किसी बेटी ने कभी अपने पिता से नहीं पूछे होंगे।
1: वर्षा,
0: काश काश आपने मेरी जिंदगी को भी इन पेड़ों की तरह सींचा होता। काश मेरी जड़ें भी इतनी ही मजबूत होती कि मुझे कभी भी मुरझा जाने का भय तो नहीं सताता।
1: आज तेरे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है बेटी।
0: पेड़ अगर अचानक कमजोर हो जाएगा तो?
1: तेरी जो मर्जी होकर मुझे परेशान मत कर। हाँ,
0: बादल और वर्षा के मिलने से अब
1: मैं जानता हूँ। वर्षा, मैं जानता हूँ, बादल की करतूतों का मुझे पता था। एक दिन वो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा।
0: बादल मेरी मांग को सिंदूर तो नहीं दे सका, मगर हम दोनों के प्रेम का प्रतीक वह कोमल सा फूल।
1: वर्षा, ये क्या कह रही है तू?
0: हाँ पापा, पर वो फूल फूल से सुंदर दुनिया की पहली किरण देखने से पहले ही शायद।
1: वर्षा,
0: कैसे कैसे पापा, कैसे मैं कर सकती थी? समय के दिए हुए कांटे रूपी पालने में उसका पालन कैसे?
1: बस कर वर्षा, बस कर, बस कर।

0: तो पापा को सब कुछ कह दिया तुमने?
1: हाँ बादल, हमारे प्यार की दास्तान।
0: प्यार की दास्तां या मेरी कायरता?
1: बादल,
0: तुमने उनसे यही कहा ना कि अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हुए भी बादल ने तुम्हें अपनाया नहीं?
1: लेकिन बादल,
0: मेरी बात सुनो वर्षा, कैसे और कहां से मैं तुम्हारा सहारा बनता, जिसका अपना एक स्वतंत्र परिचय नहीं, ठिकाना नहीं, वो भला कैसे खिलखिलाते हुए सुकुमार फूल को?
1: मुझे कुछ नहीं चाहिए बादल, कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ पूर्णता चाहिए थी, एक परिचय, एक भरोसा चाहिए था, वो मुझे दिलाती समाज की स्वीकृति। मैं किसी भी सड़क का कोई बेसहारा पेड़ नहीं, बल्कि तुम्हारे आंगन की बगिया का एक पेड़ होना चाहती हूँ, अशोक वन का एक फला फूला लहलाता पेड़ बनना चाहती हूँ बादल।
0: लहलाता पेड़ अपने एक आंगन के लिए? हाँ, सिर्फ एक आंगन के लिए, परिचय के लिए तुम छोड़ सकोगी हंसता खेलता परिवार? बोलो, अपने भविष्य के अपने सपने को सच करने की कोशिश में लगे अपने छोटे भाई बहनों को छोड़ सकोगी? जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही तुम्हारी बीमार माँ और पापा की थोड़ी सी पेंशन के सहारे छोड़कर यहाँ रह जाओगी वर्षा?
1: हाँ, रह सकूंगी, कर सकूंगी, मैं सबको छोड़ दूंगी बादल।
0: क्यों वर्षा, क्यों?
1: क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख में खिलने वाला फूल चुपके से मुरझा जाए बादल।
0: वर्षा,
1: बादल।

उस दिन वर्षा ने मेरा बहुत तिरस्कार किया, मुझे कोसा, मैंने अपने ऊपर से भरोसा ही खो दिया था। एक तरफ वर्षा की चाहत और दूसरी तरफ मेरी मजबूरी। मैं क्या करूं। मैं वो बादल पर अशर जिसके एक इशारे पर यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र आवाज बुलंद कर देते थे, उस बादल को वर्षा जैसी एक साधारण सी लड़की सहारा ना दे पाने के कारण इतनी बातें कर रही थी। हाँ, इतनी बातें, अरे धिक्कार है मुझ

0: पर ये पुरुषत्व नहीं बादल। नहीं नहीं नहीं, बादल पराशर हार नहीं मानेगा। हाँ अरे उम्र खत्म हो गई ना, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब जिंदगी तो नहीं खत्म हो गई बादल तेरी। हाँ अरे मुझे तो कुछ करना होगा। हाँ कुछ करना होगा मुझे, मुझे कुछ करना होगा।
1: बादल, ओ बादल, ओ बादल पाराशर।
0: कौन?
1: अरे मैं राजू। अरे राजू यार, तेरे बचपन का दोस्त।
0: अरे राजू तू? अरे यार कितने दिनों बाद हम मिले हैं, इधर आ, गले तो लग जा।
1: अरे आजा यार, आजा आजा आजा। अब ये बता, मैंने तेरे को ठीक पहचाना कि नहीं? लेकिन यार तू कुछ मोटा हो गया है।
0: अच्छा लेकिन राजू तुझे क्या हुआ? हाँ ऐसी हालत, अरे ये बेरुखा सा चेहरा, क्या बात है?
1: यार मैं एक मिशन में लगा हूं।
0: मिशन? नेतागिरी करनी है क्या?
1: अरे नहीं नहीं यार।
0: अच्छा तो क्या नौकरी के लिए संघर्ष?
1: ओ नो यार।
0: अरे तो फिर?
1: मेरा मिशन पेड़ है।
0: क्या पेड़? पागल हो गया है क्या तू?
1: यार ये मेरा पागलपन नहीं है बादल। मेरे पीछे जानता है कितने हजारों लोग इस मिशन में शामिल हैं।
0: अच्छा बात तो ठीक है, पर ये बता कि मुझे क्या करना होगा?
1: वो पहाड़ी गांव का बूढ़ा आदमी मुझे जागृत कर गया, चेता गया, पेड़ों की रक्षा के लिए कुछ करने का एहसास दिला गया मुझे।
0: क्या पेड़ उगाने वाला बूढ़ा आदमी पहाड़ी गांव का?
1: हाँ हाँ, अब वो ब्रज किशोर नाम है उसका।
0: ब्रज किशोर? वर्षा के पापा?
1: अब कुछ कह रहे हो क्या बादल?
0: कहना तो बहुत कुछ है राजू।
1: बादल बादल
0: जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है राजू।
1: अच्छा मतलब यानी तेरे साथ बिना अपॉइंटमेंट इतनी बात करना भी मेरी खुशकिस्मती है?
0: आखिर राय साहब का पूरा कारोबार मेरे हाथों में है राजू।
1: हाँ तू तो पक्का बिजनेसमैन हो गया यार। तू पेड़ के लिए कुछ कर यार बादल।
0: मैं राय साहब का वारिस बन चुका हूँ।
1: और राय साहब के आदेश के मुताबिक तुम एक हरे भरे जंगल को साफ करके होटल बनाने के इरादे में हो।
0: मुझे पेड़ काटना ही पड़ेगा राजू।
1: तुम पेड़ नहीं काटोगे बादल।
0: तो धमकी दे रहे हो?
1: चेतावनी दे रहा हूं।
0: अच्छा अच्छा राजू, अगर मैंने तेरी बात नहीं मानी तो?
1: देख बादल, हम तुझे ये बर्बरता नहीं करने देंगे।
0: राजू मुझे चैलेंज कर रहा है तू?
1: हाँ राजू तुझे चैलेंज कर रहा है बादल। बादल पाराशर को राजू चैलेंज कर रहा है।
2: मैं वर्षा चौधरी, एक अविवाहित नौकरी पेशा लड़की, मैं अभी तक समाज में अपना एक परिचय बनाने के इंतजार में थी। मुझे सहारे की जरूरत थी, लेकिन जब जिम्मेदारियां सामने आ जाती हैं तो समझौता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर शायद अपना परिचय बनाने की कसमसाहट आज भी कायम है। अरे राजू।
1: अरे वर्षा जी, आप?
2: सिर्फ वर्षा कहो राजू।
1: अच्छा अच्छा वर्षा, और अचानक यहाँ?
2: बादल के साथ तुम्हारा वार्तालाप सुन रही थी।
1: हाँ बादल तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है।
2: जानती हूँ, राय साहब का जमाई।
1: तुम बादल से मिली?
2: क्या फायदा, पता है राजू, बादल के पास ढेरों उम्मीदों के साथ गई थी, सब कुछ छोड़कर, सिर्फ एक सहारे के लिए।
0: मेरे पास बार बार आकर मुझे और अपने आप को परेशान मत करो वर्षा। हाँ मैं कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही व्यस्त हूँ।
2: लेकिन बादल,

0: मुझे देखकर इस तरह चिड़चिड़ा क्यों रहे हो?
1: तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लिए मेरे पास समय नहीं है वर्षा।
0: मैं घूमने नहीं आई हूँ बादल, मैं घर बसाने आई हूँ बादल।
1: घर?
0: हाँ, हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए, एक अशोक वन के लिए।
1: क्या वर्षा, होश में तो हो?
0: हाँ बादल, कब तक हम दोनों सारी दुनिया को भुलावे में रखते हुए ऐसे बहाने करते रहेंगे?
1: क्या?
0: और हमारे बीच ये झूठा रिश्ता कब तक? कब तक मैं कुमारत्व का झूठा हस्ताक्षर बनती रहूंगी?
1: देखो वर्षा, अब मैं बेकार नहीं हूं। अतीत की सभी यातनाएं भूलने को मजबूर हुआ हूं, नए तरीके के जीवन को जीने की कोशिश कर रहा हूं।
0: तो बादल, हमारा वो प्यार, वो पहला फूल?
1: सब भूल जाओ वर्षा, सब भूल जाओ, मैं अब शादीशुदा हूं।
0: बादल, तो आखिर तुमने राय साहब की अपाहिज लड़की को? ओह गॉड,
1: ये जो प्रोजेक्ट देख रही हो ना, ये होटल वाला,
0: इसके लिए?
1: हाँ, मुझे जंगल के बहुत से पेड़ काटना पड़ेंगे।
0: ओह, और मैं वापस आ गई राजू।
2: अच्छा ही हुआ वर्षा।
0: राजू, तुम मुझे ठुकराओगे तो नहीं?
2: मेरे पास क्या है वर्षा?
0: जीने का ये संजीवनी मंत्र।
2: संजीवनी मंत्र?
0: हाँ, पेड़ के लिए हमदर्दी।
2: हाँ वर्षा, पेड़ों के लिए ढेर सारे सपने हैं मेरे।
0: राजू, पेड़ ही जीवन की परिभाषा है।
2: और हमारे पर्यावरण का आधार भी तो हैं।
0: मैं इन पेड़ों के लिए तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे साथ लड़ूंगी, विद्रोह करूंगी। राजू, मेरे पापा के द्वारा उगाए गए सैकड़ों पेड़ों को मैं बादल जैसे सुविधावादी पर्यावरण के दुश्मन का निशाना नहीं बनने दूंगी। राजू, नहीं बनने दूंगी।
2: हाँ वर्षा, हाँ, यही होगा हमारा मकसद और हमारी जिंदगी का सही परिचय भी।
0: जब तक पेड़ शांति से नहीं जी सकेंगे, शायद हमारे भी जीवन का सपना बदल जाएगा। हाँ राजू, हाँ, हमारा लक्ष्य होगा पेड़, पेड़ का जीवन।

अभी आप सुन रहे थे नाटक अशोक वन का पेड़। भाग लेने वाले कलाकार थे राजू सुनील वैद्य, बादल अरशद इकबाल, पेड़ मोहम्मद नजीर कुरैशी, ब्रज आर एन चतुर्वेदी और वर्षा प्रिया चंदनानी। इस नाटक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे जगदीश अधिकारी।

अभी आपने नाटक सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन। राग है बिहाग।

अभी आपने रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन सुना, राग था विहाग। इसी के साथ आज का राग रजनी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।